इब्राहिम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे बजुज उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होंगी।

और मदियन की तरफ उनके भाई शोएब को भेजा तो उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो और पिछले दिन के आने की उम्मीद रखो और मुल्क में फसाद न मचाओ।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से।

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: 101 FM.
2: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: 101 FM.
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर आओ। एई पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
4: हमसे है रोशन ये जहां,
5: हमसे है

0: 8 AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Friday, 26 Zilhaj, 12th June, 2026. This is Radio Pakistan, the news read by Sadia Sattar. First, the headlines. Federal budget for next fiscal year will be presented in the National Assembly today. President and Prime Minister have expressed Pakistan's commitment to promoting peace and stability in the region. Chief of Defence Forces and Commander of Turkish Land Forces at a meeting in Rawalpindi have discussed regional security and avenues for enhanced bilateral defence cooperation. British Defence Secretary and Armed Forces Minister have resigned from their offices. In the inaugural match of the FIFA World Cup, Mexico beat South Africa by 2-0 goals in Mexico City last night.
1: This is FM 101.
2: Hamare bacche, hamara kal. Inki hifazat, hamari zimmedari. बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: किसी भी किस्म की ज्यादती, जबर या इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के लिए वजारत इंसानी हुकूक की हेल्पलाइन 1099 यानी 1099 पर कॉल करें और मुफ्त कानूनी मशावरत और मदद हासिल करें। ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से पेश किया गया।
1: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: 101 FM.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
1: 101 FM।
3: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम, सदर पाकिस्तान की खसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकोनॉमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें। याद रखें, बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार।
4: दिस इज FM 101.
5: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
4: This is FM 101.
2: खानदान में किसी फर्द की वफात बिलाशुबा एक सानिया है, लेकिन मरहूम का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराना बहरहाल जरूरी है ताकि उसके गलत इस्तेमाल की रोकथाम हो और विरासत की तकसीम में कोई परेशानी ना हो। याद रखें, नादरा यूनियन काउंसिल में इंदराज की बुनियाद पर मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख करता है और आपको उन तमाम मराहिल की तकमील में हर मुमकिन मावनत फराहम करता है। नादरा ने यूनियन काउंसिल में वफात का इंदराज आसान बनाने के लिए पाकिस्तान भर के अस्पतालों में जदीद तरीन डेथ नोटिफिकेशन टूल्स फराहम कर दिए हैं। अस्पताल में अपने खानदान के किसी फर्द की वफात पर अपना और मतवफी का शनाख्ती कार्ड लेकर अस्पताल में मौजूद रजिस्ट्रेशन काउंटर पर तशरीफ ले जाएं और वफात का इंदराज करने के बाद रसीद हासिल करें। इसके साथ ही आपको दिए गए नंबर पर नादरा की जानिब से SMS रसीद भी मौसूल हो जाएगी। वफात के 30 दिन के अंदर अस्पताल की रसीद के हमरा अपनी यूनियन काउंसिल में तशरीफ लाएं और वफात का इंदराज कराने के बाद डेथ सर्टिफिकेट हासिल करें। इसके बाद नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं और मतवफी का शनाख्ती कार्ड मंसूख कराएं। नादरा की पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए आप यूनियन काउंसिल से डेथ सर्टिफिकेट और नादरा से बेफॉर्म घर बैठे भी बनवा सकते हैं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
4: दिस इज FM 101।
6: 13 जून PC होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
4: दिस इज FM 101।
6: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
7: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
8: I love FM 101। there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: गल सुने थे बे
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: आपने FM 101 किया।
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
3: This is FM 101.

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम, सदर पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकॉनमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार।
4: दिस इज FM 101.1।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
6: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
7: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म, शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक ID मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
8: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर solution।
9: हमसे है रोशन ये जहां,
10: हमसे है

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मज़ीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.alshifaeye.org.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.
2: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं. 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
0: सुनते रहिए FM 101.
3: This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: 13 June, PC Hotel Lahore aaiye aur dein Al Shifa Trust Eye Hospital ka saath. Kisi ki zindagi ka andhera hamesha ke liye mitane mein apna hissa dalein. Mazeed malumat, ticket aur table ki booking ke liye abhi hamari website visit karein. www.alshifaeye.org.
0: This is FM 101.
2: Sochiye, jab duniya sunai to de magar dikhai na de. Lahore, जहाँ हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
3: सुनते रहिए FM 101.
4: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
5: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक, वन अबव FM 101।

दिन के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। सादर और वजीर आजम ने खत्ते में अमनो इस्तेहकाम के फरोग के अज़्म का इआदा किया है। आज बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। और गुज़िश्ता रात मैक्सिको सिटी में फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मैक्सिको ने जनूबी अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया। और अब इन खबरों की तफसील। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ऐवान में बजट पेश करेंगे। सेनेट का अजलास आज सुपहर 4:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्कित होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान खत्ते में अमन इस्तेहकाम और तजविराती तवाज़ुन के फरोग के साथ साथ अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। यह अज़्म उन्होंने पाक बहरिया के बेड़े में हंगूर क्लास आबदोज की शमूलियत पर अपने अलग अलग पैगाम में किया। उन्होंने इसे पाकिस्तान की बहरी दिफाई सलाहियतों को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम संगमील करार दिया। उन्होंने चीन की हुकूमत और आवाम के ग्रां कदर तावन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हंगूर प्रोग्राम पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना और मजबूत तस्वीराती शराकत दारी की अक्कासी करता है। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि हंगूर क्लास आबदोज पाकिस्तान के बहरी मफादात के तहफ्फुज़ और समुंदरी हदूद के दिफा में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि यह मंसूबा पाकिस्तान के दिफाई खुद इन्हिसारी की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। उन्होंने हुकूमत के इस अज़्म का अयादा किया कि मुसल्ला अफवाज की दिफाई सलाहियतों को जदीद तकाजों के मुताबिक मजीद मजबूत बनाने

0: 101. We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायद पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power solution.
7: हमसे है रोशन ये जहां,
8: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: I love
2: FM 101. 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
3: This is FM
2: 101. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.
1: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया.
4: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
5: Suror Sangeet, Sazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले हम खबरों का खुलासा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। सदर और वजीर आजम ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के अज़्म का इआदा किया है। आज बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। और पाक आर्मी ने बरतानिया में मुनक्किदा बैन अल-अक़वामी पीस स्ट्रिकिंग मुकाबला 2026 में पहली पोजीशन हासिल की है।
2: Hi, this is FM 101.
3: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
4: हमारे बच्चे हमारा कल, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। बच्चे की गुमशुदगी की सूरत में फौरी तौर पर अपने करीबी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट का इंदराज करवाते वक्त तफसीली वाक्या, बच्चे की तस्वीर, घर का पता, फोन नंबर और मुकम्मल कवायफ पुलिस के मुतल्लिका अफसर को जरूर फराहम करें। गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद और रहनुमाई के लिए ज़ारा हेल्पलाइन 1099 पर राब्ता करें। बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला मोबाइल ऐप के जरिए भी दी जा सकती है, जिसके लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से आवाज ऐप डाउनलोड करें और इसके जरिए ज़ारा ऐप पर कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। बच्चे महफूज, मुस्तकबिल महफूज। मफाद-ए-आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This is FM 101.1.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: This is FM 101.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
5: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: ओ हर फन माला ओ हो जाएगा मोमिन, हक जदो सीने लाया दिल होया रोशन, रब

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। अयाज असलम से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। सदर और वजीर आजम ने खत्ते में अमन इस्तेहकाम के फरोग के अज़्म का इआदा किया है। भारत में मोदी हुकूमत मणिपुर में हालात काबू में लाने में नाकाम हो गई है। और पाक आर्मी ने बरतानिया में मुनक़िदा बैन अल-अक़वामी पीस ट्रैकिंग मुकाबला 2026 में पहली पोजीशन हासिल की है।
2: This is FM 101.
3: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
4: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मख्वी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
5: This is FM 101.
6: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: This is FM 101.
8: सुनते रहिए FM 101 101।

काम कर गईं दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: सुनते रहिए FM 101 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: अपनी मुल्क की मईशत को जदीद आलमी डिजिटल मालियाती निज़ाम के साथ हमाहंग करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान ने अरब सरजमीनों पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे, जंग बंदी के माहदों के एहतराम और मशरक वस्ता में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। रेडियो पाकिस्तान से पहला खबरनामा पढ़ने का एजाज हासिल करने वाले शकील अहमद की 49वीं बरसी आज मनाई जा रही है। खवातीन के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच आज इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान बर्मिंघम में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ऐवान में बजट पेश करेंगे। रेडियो पाकिस्तान अपने कौमी नशरियाती राबते पर इस बुलेटिन के फौरन बाद वजीर खजाना की बजट तकरीर नशर करेगा। आज वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफद की क्यादत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर और वजीर बराए वफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। वफद ने वजीर बराए कौमी सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अराकीन कौमी असम्बली फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल थे। मुलाकात में वजीर आजम ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी जमात है और मुल्क की तरक्की, मौशी इस्तेहकाम और अवामी फलाह के एजेंडे की तकमील में इसका मुस्बत और तामीरी किरदार काबिल कद्र है।
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मखवी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफाद आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: किसी भी किस्म की ज्यादती, जबर या इस्तेहसाल को रिपोर्ट करने के लिए वजारत इंसानी हकूक की हेल्पलाइन 1099 यानी 1099 पर कॉल करें और मुफ्त कानूनी मशावरत और मदद हासिल करें। ये पैगाम वजारत इंसानी हकूक हुकूमत पाकिस्तान के तआवुन से पेश किया गया।
4: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
5: Welcome to Islamabad.

नज़म से गज़ल बन गई, तू रोज़ ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रहीं, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे ख़त्म कर अभी, वो गलतियाँ गिनती गई, नफ़रतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शामें तो उम्मीद की भी ढलती गई, यो इफ

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

ट्रांसफॉर्मेशन की कानूनी बुनियाद रख दी है। इसके तहत नेशनल डिजिटल आईडी, नेशनल एक्सचेंज लेयर और ओपन डेटा इकोसिस्टम जैसे मंसूबे शुरू हो चुके हैं। मरकजी हुकूमत, अदालती निज़ाम और पार्लियामेंट में डिजिटल अदबी का सफर पर गामजान है। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं बल्कि रियासत और शहरी के दरमियान रिश्ते को शफाफ और फाल तर बनाने की सही है। जनाब स्पीकर, 2023 में हमारा मुल्की कर्ज जीडीपी के डेट टू जीडीपी 75% के बराबर था, जो पिछले माली साल में कम होकर 70.7% और इस साल मजीद कम होकर तकरीबन 68.5% की सतह तक आ चुका है। ये पेशरफ एक मुनज़्ज़म मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी पर अमल दार का नतीजा है। गुज़श्ता 2 सालों में हुकूमत ने 4,900 अरब रुपए का कर्ज कबल अज़ वक्त वापस किया या सस्ते कर्ज से तब्दील करते हुए अपना बोझ कम किया। हमने सरमायाकारों और मसनूआत की डाइवर्सिफिकेशन को खास तरजीह दी है, खासतौर पर इंश्योरेंस सेक्टर के लिए तवील मुद्दती जीरो कूपन बॉन्ड का इजरा किया और शरिया असूलों के मुताबिक फाइनेंसिंग का हिस्सा बढ़ाया गया, जबकि बैन अल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ बॉन्ड के इजरा के जरिए सरमायाकारी की बुनियादों को वसत दी है। हमारा मुकामी कर्ज का एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी 2024 में 2.8 साल था, जो अब मई 2026 में बढ़कर 3.8 साल हो गया है, जिससे इस कर्ज के रीफाइनेंसिंग रेट में नुमाया कमी हुई है। टेलीकॉम कंपनियों के डिजिटल वॉलेट्स के जरिए आवाम को हुकूमती बॉन्ड्स में बराह रास्त सरमाया करने के लिए मौका फराहम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले हम हफ्ते से 2 हफ्ते में इसका एक अमली प्लान भी देखेंगे और इसकी हम इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। इन तमाम इकदाम का मकसद ये है कि मुल्क की कर्ज आने वाले वर्षों में ना सिर्फ कम हो बल्कि ज़्यादा मुतनवे, सस्ता और मजीद मुस्तकम बुनियादों पर इस्तवार हो। अब मैं SIFC का जिक्र करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में सरमायाकारी में फरोग का एक अहम इनेबलर बन चुका है। गुज़श्ता 1 साल SIFC ने 12 मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद मुकामी और बैन अल-अक़वामी सरमायाकारी मनसूबों को सहूलत फराहम की। इन इकदाम के ठोस नतज वाजे हैं। मैं 2-3 मिसालों के जरिए SIFC के अहम किरदार पर रोशनी डालना चाहूँगा। इनमें सबसे पहले पाकिस्तान स्टील मिल्स की 6,860 एकड़ अराजी को एक खसूसी इकतसादी जोन के तौर पर फाल करना है। ये मनसूबा मुल्क में मुआशी सरगर्मी में इजाफा करेगा। हर कोल रेलवे मनसूबा पर भी SIFC की अफादियत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान रेलवे और हुकूमत सिंध की मुश्तरक मालवी मुआवनत से शुरू किए गए इस मनसूबे से मुकामी तवानाई के जखायर को कौमी नकलो हमल के नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी। इस सिलसिले का एक और बड़ा कदम वेयर हाउसिंग के शोबे को बाकायदा तौर पर सनअत का दर्जा देना था। इस इकदाम से सप्लाई चेन की लागत कम होगी और कई शोबों को फायदा पहुँचेगा। जनाब स्पीकर, ये बजट एक वाजे और बामकसद हिकमत अमली के तहत तरतीब दिया गया है। बजट की सबसे अहम तरजीह मुल्क में पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना और बरामदात को फरोग देना है। इस मकसद के लिए हम बरामदी सनअतों को टैक्स मराहत दे रहे हैं और एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम के जरिए एक्सपोर्टर्स के लिए वसाइल फराहम कर रहे हैं, ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स बैन अल-अक़वामी मंडियों में मजीद मौसर अंदाज में मुकाबला कर सकें। बरामदात में इजाफा हमारे ज़र मुबादला के जखायर को मुस्तहकम करेगा, रोजगार पैदा करे और खुशहाली का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हमने ज़राअत के फरोग और किसानों को आसान कर्जाजात की फराहमी के लिए कई इकदाम किए हैं। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे को मजीद तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं वाजे करता चलूँ कि मुल्क में रोजगार की फराहमी हमारी अहम तरजीह है। इस हवाले से आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ऐसे कारोबारी माहौल की फराहमी है जिसमें निजी शोबा फले फूले, मुल्क में कारोबार को फरोग मिले और रोजगार के मौके पैदा हों। हमें कभी उम्मीद है कि प्राइवेट सेक्टर खसूसी सनअती शोबे के फरोग से मुल्क में रोजगार की फराहमी बेहतर होगी। जनाब स्पीकर, इस बजट की एक और अहम तरजीह अगले साल के टैक्सों के बोझ में इजाफे की बजाय टैक्स कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट के जरिए आमदन बढ़ाना है। इस हवाले से ना सिर्फ हम जदीद इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस निज़ाम के इस्तेमाल में तौसील आ रहे हैं बल्कि FBR की तंजीमें 9 भी जारी है, जिसकी तफसील में

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: JE Power, the ultimate power solution.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org. सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है. लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा। मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूँ, यह है कमाल मेरा।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: वो एक्चुअली
1: जी
0: जी वो एक्चुअली अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना कि सुरमई रंग बहुत पसंद है आपको।
2: आपकी एक अमानत थी, वो लौटाने आया हूँ।
3: शदीद मोहब्बत करता हूँ आपसे।
1: तो तुम खुशी खुशी रहो यहाँ पे, नहीं रह रहे
4: हम भाग नहीं सकते।
5: उफ, क्या मेरी जान, शादी इज अ कॉम्प्रोमाइज।
6: छुट्टी नहीं मिली मुझे।
7: मैं तैयार हुई हूँ आपके लिए। साड़ी पहन
8: पहन नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। I can't do this anymore, मुझसे ये शादी नहीं चल रही।
9: वापस घर बुला ले प्लीज।
10: बार बार एक ही।
11: You know what?
12: लेकिन आपके पास

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: this music, and then this magic. One Above, FM 101.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे। लाहौर, जहां हर गली में एक कहानी है, लेकिन कुछ आंखें ऐसी भी हैं जिनकी रोशनी धुंधला चुकी है। लेकिन अब नहीं, 13 जून अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल इन्हीं आंखों का नूर वापस लौटाने अब आ रहा है आपके शहर लाहौर में।
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ। किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें। मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org।
0: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

सजा होती है। There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: आठ बजने वाले हैं, आइए रेडियो खबरनामा सुनते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम, रात के 8 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राणा
3: और अब्दुल कदीर।
2: पहले अहम खबरों का खुलासा।
3: अगले माली साल का अवाम दोस्त वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है, जिसका मजमू हजम 18,771 अरब रुपए है।
2: हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहों के लिए 7% जबकि कम अज कम उजरत में 10% तक के इजाफे का ऐलान किया है।
3: वजीर खजाना ने कहा है कि हुकूमत ने तमाम चारों टैक्स सिलेबस में इनकम टैक्स की शरह कम करते हुए तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है।
2: वफाकी बजट में सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए रखे गए हैं।
3: मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अज़ा के लिए ग्रांट्स की मद में 2,680 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं।
2: वजीर आजम ने कहा है कि बजट से अवाम को रिलीफ मिलेगा, तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम होगा, बरामदात में इजाफा होगा और ज़रई और सनअती शोबों को फरोग मिलेगा।
4: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
5: Hey, we'll be back after this short commercial break.
6: तहफ्फुज़ हर बच्चे का बुनियादी हक है। इन फूलों से नाजुक बच्चों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों की गुमशुदगी की सूरत में कोताही या लापरवाही न बरतें और फौरी तौर पर ज़ारा अलर्ट हेल्पलाइन 1099 पर कॉल करके इत्तला दें। आप अपनी शिकायत गुमशुदा, मख्वी और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की मोबाइल ऐप ज़ारा अलर्ट के जरिए भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अभी अपने मोबाइल फोन्स पर ज़ारा अलर्ट मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल एप स्टोर से डाउनलोड करें और पाकिस्तान के बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मफादे आमा का ये पैगाम वजारत इंसानी हुकूक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: One, one, FM.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: 13 जून पीसी होटल लाहौर आइए और दें अलशफा ट्रस्ट आई अस्पताल का साथ. किसी की जिंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए मिटाने में अपना हिस्सा डालें. मजीद मालूमात, टिकट और टेबल की बुकिंग के लिए अभी हमारी वेबसाइट विजिट करें www.alshifaeye.org.
0: There's music and then there's magic. One Above, FM 101.
1: सोचिए, जब दुनिया सुनाई तो दे मगर दिखाई ना दे. लाहौर

0: this music, and then there's magic. One Above, FM 101. There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, प्रोग्राम जान है ते जहान है दे नाल ताहिरा जबीन हाजिर है। ए प्रोग्राम ताडी खिदमत विच अनवर हस्पताल वालों पेश कीता जांदा है। साडे नाल साडे प्रोग्राम च अज मौजूद ने होमियो डॉक्टर सईद अनवर सुलहरी साहब। डॉक्टर साहब साबका वाइस प्रिंसिपल ने लाहौर मेडिकल कॉलेज दे विच, ते डॉक्टर साहब दा अपने शोबे दे विच 32 साल दा तजर्बा है। सामईन तुहानूं कोई भी मसला होए तुसीं डॉक्टर साहब कोल क्लीनिक आ सकते हो। जेड़े मरीज क्लीनिक नहीं आ सकते हो, डाक दे जरिए भी दवाई मंगवा सकते ने। डॉक्टर साहब दा फोन नंबर ते उन्हां दे क्लीनिक दा एड्रेस नोट कर लवो। अनवर हस्पताल नजद थाना बदामी बाग लाहौर। डॉक्टर साहब दा फोन नंबर है 03-00-44-1-3-8-6-0, यानी 03-44-13-860। डॉक्टर साहब दा दूसरा नंबर नोट कर लवो 03-41-6-1-1-7-7-9-0, यानी 03-41-611-77-90। डॉक्टर साहब दे क्लीनिक दे औकातकार ने दोपहर 12 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक, ते रात 8 बजे तो लैके 11 बजे तक अपने क्लीनिक ते मरीज वेखते ने। ते आओ सामें डॉक्टर साहब नाल इना दे मुख्तलिफ मर्जा दे बारे च जिहड़े कि सानू सुनन वालिया ने किते ने मैसेज, उन्हां दे बारे च गलबात करने आ, ते कुछ बीमारियां दे बारे च डॉक्टर साहब नूं तफसीलन सुनने आ सी। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
2: वालेकुम सलाम
1: डॉक्टर साहब। अजकल शुगर दा बहुत सारे लोकां नूं मसला हो रहा है, ए सानूं काफी मैसेज मसूल भी हुंदे ने, यानी शुगर दी वजह तो लोकां नूं जिहड़े मसले हो जांदे ने मजीद, ते ओहदे बारे च सानूं मैसेज आए ने इक दो, ते ओह कहिंदे ने कि सानूं डिटेल नाल दसो कि इहदे विच किहड़े किहड़े मसले मजीद वध जांदे ने, परहेज और होम्योपैथिक दे विच इहदा तरीका इलाज जो है ओह तुसीं तफसीलन सानूं दस दिओ।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर एक ऐसी नामराद बीमारी है, जदों एक बार लग जाती है फिर बड़ी मुश्किल जान छड़दी है। तो शुगर जी असल दे विच बहुते लोगों को होंदी है, जिन्हां दा मोटापा हुंदा, खास तौर पर पेट के उत्ते चर्बी चढ़ जाती है, उसकी वजह

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: 101 FM.
3: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: Big socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101. 101.

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: 101 FM.
4: This is FM 101.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101. 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

आए जनाब आए मौसम रंगीले सुहाने जिया नहीं माने। अच्छा आप भी मुस्कुरा रहे हैं भाई। ओके जनाब वेलकम बैक टू द शो। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को रेडियो पाकिस्तान FM 101 के लाहौर स्टूडियो से। मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। वेल जनाब कुछ मौसम की सूरत हाल इस तरह है कि वो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक फैक्ट है, दिस इज़ फैक्ट ऑफ लाइफ, कि जब भी मौसम अच्छा होता है ना आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपकी जो कैफियत है ना वो बदल जाती हैं, जो लिखने वाले हैं उनके लिखने में निखार आ जाता है और जो बोलने वाले हैं उनके बोलने के अंदर बड़ा एक खुमार सा आ जाता है। तो ये कमाल है मौसम का। अच्छा मेरे पास ना एक बहुत ही पुराना मेरा एक BGM है जो कि बैक इन लॉन्ग टाइम बैक मुझे ये BGM ना मैं FM 101 सियालकोट जब गया तो इस दफ़ा मुझे अली कुरैशी ने मुझे गिफ्ट किया और उन्होंने कहा जी ये BGM अक्सर हम चलाते हैं, दिस इज़ वेरी ओल्डी गोल्डी सा एक BGM है मेरा। सो आई वुड लाइक कि आज मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अपना शो करूं। आहा आई डोंट नो सोचना बैक इन मेमोरीज कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए। आहा आदिल भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे स्टूडियो में। आदिल भाई तशरीफ ला चुके हैं, थैंक यू सो मच सर, इट्स अ ऑनर फॉर मी। आज हमारा आज ये काम आप करके ही जाएंगे, मुझे पता है, अब मुझे पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर। सो जनाब आदिल भाई इस वक्त आ चुके हैं स्टूडियो में, थैंक यू सो मच भाब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जैदी साहब थैंक यू आदिल भाई को बुलाने का, मेरी सांस में सांस आ गई है, कुछ लोगों को देख के वैसे ही आपकी ना सांस में सांस आ जाती है। आदिल भाई हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होते हैं और ही इज़ वेरी सपोर्टिव एज ऑलवेज, सो थैंक यू सो मच आदिल भाई अगेन, आपका शुक्रिया। सो जनाब कुछ पुरानी मेमोरीज़ को रिकॉल में कर रहा था, ये बैक इन लॉन्ग टाइम में मुझे याद है कि जब FM 101 सियालकोट की ट्रांसमिशन स्टार्ट हुई, सो मेरे बड़े प्यारे कज़न हैं उन्होंने मेरे लिए ये वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक बनाया। आहा और जनाब 04221111001 इज़ द डार्लिंग नंबर जिस पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मौजू है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। आज हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों को खुश रखने के लिए, यानी कि लोगों के लिए उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए हम क्या क्या कुछ कर जाते हैं, क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं। वैसे हर बंदा ये सोच रहा होगा कि हाँ यार किसी ना किसी मकाम पर किसी ना किसी जगह मैंने भी बड़ा कुछ किया है, मैं भी बड़ा कुछ करता हूँ, है ना, होता है ना ऐसे। अच्छा अगर हर बंदा ये कहना शुरू हो जाए भाप साहब, हर बंदा ये कहना शुरू हो जाए कि जी मैंने बड़ा कुछ किया, मैं बड़ा कुछ कर रहा हूँ जी, मेरे पास मैं तो बस उसने मेरे साथ बड़ा कुछ कर दिया, यानी हर बंदा ये क्लेम कर रहा है कि मैं जो हूँ ना मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ या मैंने बड़ा कुछ किया। लेकिन दूसरी तरफ जब आप पॉइंट सुनते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम वन साइडेड बात सुनते हैं, एक साइड बात सुनने के बाद हमें दूसरी साइड पे क्या असल कहानी है वो हम जानने की कोशिश नहीं करते। तो जब भी आपकी ऐसी कोई कहानी या ऐसा कोई सीन होना तो प्लीज़ एक काम किया करें, आप दोनों साइड की बातें सुना करें, दोनों साइडों पे आप रिस्पांस लिया करें, जानने की कोशिश करें एक्चुअली बात क्या है, एक्चुअल मामला क्या है, मामले को समझने की कोशिश किया करें। कभी भी वन साइडेड एक साइड की बात पर फैसला नहीं किया जा सकता, प्लीज़। तो मैं चाहूँगा एक दफ़ा फिर आदिल भाई के लिए बहुत सी थाली होनी चाहिए। आदिल भाई मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आई नो यू कैन डू इट आदिल भाई, यू कैन डू इट। तो क्या है इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनके खुदा पर हो, चला तुम फैज़ मौजों से घबराया नहीं करते। तो हम ना घबराएंगे ना परेशान होंगे क्योंकि आदिल भाई हमारे पास हैं इस वक्त और इसीलिए ये हमारा काम हो के रहेगा। बड़ी उम्मीदें हैं आपसे वाबस्ता हमें। सो जनाब एक ट्रैक की जानी बढ़ेंगे उसके बाद लौट के आएंगे। तो आपने भी हमें बताना है कि आज का हमारा जो मौजू जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम लोगों की नज़र में अच्छा बनने के लिए क्या क्या कुछ कर जाते हैं, अपना सुकून अपना चैन अपना करार अपना क्या क्या कुछ हम कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं प्लीज़। सो जनाब एक ट्रैक की जानी बढ़ेंगे उसके बाद लौट के आएंगे। मेरे इर्द गिर्द इस वक्त जनाब काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह दोस्त हैं जो कि मुझे इस वक्त नज़र आ रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं और मुझे इनकी मेहनत बड़ी अच्छी लग रही है।
All right, जनाब, एक बहुत ही दिलकश सा गीत मैं चलाने जा रहा हूँ. दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, तमाम सुनने वालों के नाम और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम. इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर

थैंक यू वेरी मच आदिल भाई। Alright, now this track is for all of you, तमाम सुनने वालों के नाम शब के सहर में। मुझे फरहान खान कहते हैं। आज थोड़ा सा हमारा टेक्निकली सिस्टम चल रही हैं, बहुत सी चीज़ें इस टाइम स्टूडियो में चल रही हैं जो कि आप नहीं देख सकते। मैं इस वक्त बराह रास्त से मंज़र देख रहा हूँ कि कौन कौन से लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त। सो आप इसको फील कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ब्रॉडकास्टिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि कितना कुछ हो रहा होता है लेकिन नज़र नहीं आता, लेकिन आप फील कर सकते हैं। यस यू कैन।

सो जनाब, बात कहाँ से कहाँ चलती है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, क्या बात चल रही होती है, क्या बात हो जाती है और क्या से क्या ये लड़का कर जाता है। अच्छा जनाब, मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी हमारे साथ है। माशाल्लाह, बहुत उम्दा प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। नज़ीर, आपका मैसेज मैं शामिल कर चुका हूँ। शमसी रेडियो लिसनर लाहौर इस्लामाबाद पाकिस्तान, शमसी साहब, अमरजा चौधरी, अरे वाह, थैंक यू, सबको बहुत बहुत सलाम। इरफानुल्लाह हमें सुन रहे हैं इस वक्त और कहते हैं, पीस बी अपॉन यू एंड मर्सी ऑफ अल्लाह हिज ब्लेसिंग, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच इरफानुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, आपने 101 एफएम को ट्यून किया। मलिक वसीम अवान मुंडा सियालकोटी, मोहतरम जनाब आरजे फरहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान का शहर सियालकोट का नाम अपने प्रोग्राम में लिया। भाई, मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है, मैंने सियालकोट का नाम पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि सियालकोट जो है ना वो पाकिस्तान की मईशत के अंदर एक बहुत रीढ़ की हड्डी है, बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है एक्सपोर्ट के हवाले से। ऐसे ऐसे मैं तो हैरान होता हूँ अदील जैदी साहब, कि मैं सियालकोट की गली गली के अंदर मोहल्ले मोहल्ले में इंडस्ट्री है। और मैं पिछले दिनों एक नौजवान से मिला, आप इमेजिन करेंगे, ही वॉज अ स्टिचर, वो एक फैक्ट्री में एज अ स्टिचर काम करते थे, पैटर्न भी काट लेते हैं, स्टिचिंग भी कर लेते हैं, हमारे रेडियो के बड़े बड़े मारूफ वो लिसनर भी रहे हैं। अच्छा, वो सर एक स्टिचर थे, एक फैक्ट्री के अंदर स्टिचिंग करते थे और पैटर्न वगैरह काटने का भी उनको हुनर आता था, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाउ ही इज़ ए एक्सपोर्टर, और उन्होंने अपने काम का जो आगाज़ किया था 2020 या 21 में कोविड के दौरान किया, उनकी जॉब शायद चली गई, उसके बाद उनकी जॉब चली गई तो उन्होंने ख़ुद से कंप्यूटर पर बैठे काम शुरू कर दिया, और 5 जमातों तक पढ़े हुए, सिर्फ 5वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की, और जितनी भी उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन है वो नौजवान ख़ुद करता है, एक्सपोर्ट वो ख़ुद करता है, कस्टमर्स से डीलिंग वो ख़ुद करता है, कॉरस्पॉन्डेंट जितनी भी करनी है वो कस्टमर्स के साथ वो ख़ुद करता है नौजवान, और एक्सपोर्ट भी वो ख़ुद करता है सारी, मतलब टोटल प्रोसेस। और उसके पास अब उसकी फैक्ट्री में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर वो अकेला काम कर रहे हैं वो आज कई 100 बंदे उसके साथ अटैच हैं जो काम कर रहे हैं। नो ही इज़ एक्सपोर्टर, वो मेहनत करें आप लगन के साथ, और रास्ते बहुत हैं अब सर, जिन्होंने काम करना ना वो काम कर सकते हैं, और उनके पास तो मैं चूँकि सियालकोट की बात कर रहा था कि सियालकोट में गली गली में आपको इंडस्ट्री लगी नज़र आएगी, चाहे वो SMEs हैं, चाहे वो बड़ी एक्सपोर्टर्स हैं, या स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, या किस भी, चाहे वो मेकिंग कर रहे हैं, वो एक्सपोर्टर्स के लिए माल बना रहे हैं, कहीं सर्जिकल का काम हो रहा है, कहीं पे लेदर गारमेंट्स का काम हो रहा है, कहीं के इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, क्रिकेट के इक्विपमेंट बन रहे हैं, सो यू पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग और बड़े क्रिएटिव हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और ये पाकिस्तान के लिए देखें, ऑल एज क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान एट दी एंड, अगर फीफा के अंदर इस टाइम वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, तो वो सियालकोट का बना है, तो वो पाकिस्तान की एक नाम रोशन हो रहा है ना, कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री, एंड ऑल एज क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान एट दी एंड, अगर फीफा के अंदर इस टाइम वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, तो वो सियालकोट का बना है, तो वो पाकिस्तान की एक

ये ट्रॉफी हर किसी को हाथ लगाना, अब मतलब ये जो ट्रॉफी है ये बड़ी ख़ास किस्म की ट्रॉफी होती है। इस ट्रॉफी को हर बंदा नहीं पकड़ सकता, इसको बड़े प्रोटोकॉल्स के साथ लाया जाता है। और जो टीम ये ट्रॉफी जीतती है, यानी फीफा का वर्ल्ड कप हर चार साल के बाद होता है, फुटबॉल हर चार साल के बाद जब ये ट्रॉफी आती है, तो ये ट्रॉफी जो टीम जीतती है उसको ये ट्रॉफी नहीं मिलती। वो फीफा का जो हेडक्वार्टर है ना, उसमें इस ट्रॉफी को जमा करा दिया जाता है और उस टीम के नाम से उसको मंसूब कर दिया जाता है। सो ये एक फीफा के रूल्स हैं, जाहिर बात है उसको वो उनकी अपनी एक है जो उन्होंने इसको किया है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये है कि ये जो ट्रॉफी है ना, ये बेसिकली तकरीबन 36.8 सेंटीमीटर ऊंची होती है और इसका वज़न जो है ना 6.175 किलोग्राम का होता है। और ये जो ट्रॉफी है ना, तकरीबन आप अमेजिंगली इसका जो वज़न है 70 से 80 किलोग्राम तक होता है। और इसकी जो ये ट्रॉफी है ना, ये डिज़ाइन बड़ा ही एक यूनिक सा डिज़ाइन है, जो कि सलीवो के नाम से अतालवी एक मुजस्मा साज थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, इस ट्रॉफी को। और अगेन जैसे मैं बता रहा था कि ये ट्रॉफी आप लेके नहीं जा सकते, गालिबन ब्राज़ील को एक दफ़ा ये फीफा की तरफ से एक ट्रॉफी मिली हुई है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप ज़्यादा जीते थे, तो इस वजह से उन्होंने 1970 में गालिबन उनको ये ट्रॉफी लेके जाने की इजाज़त मिली थी। इसके अलावा कोई भी टीम ट्रॉफी ये नहीं लेके जा सकती। बड़ी खूबसूरत सी वो ट्रॉफी आप लोग अक्सर डिस्प्ले पे देखते हैं और देखा होगा आपने। सो ये एक बड़ी ही डिफरेंट सी जो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी है, और जो फाइनल जीतने के बाद जो खिलाड़ी है ना, वो मैदान में सिर्फ वो खिलाड़ी उठा सकते हैं उस सिर्फ एट दैट पीरियड, उस वक्त के लिए जब वो जश्न मना रहे होते हैं। इसके अलावा इस ट्रॉफी को कोई नहीं उठा सकता। फिर वो कुछ ऑफिशियल्स हैं जो फीफा के, वो इस ट्रॉफी को फिर उठाते हैं और ले जाते हैं, और बड़े प्रोटोकॉल के साथ ये ट्रॉफी आती है, आप हैरान होंगे। एनीवेज जनाब, ये तो बात थी कुछ फ़ुटबॉल के हवाले से, तो हमारा आज का जो मौजू है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सो अभी वक्त हुआ जाता है, एक छोटा सा ट्रैक से लाते हैं, उसके बाद हम दोबारा लौट के आएंगे। हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पाकिस्तान FM 101। मुझे ऐसे लगा कि अरे जनाब, ये ट्रैक से लाएंगे, उसके बाद हम लौट के आएंगे। और मुझे कहते हैं फरहान खान, आपको क्या कहते हैं? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, इस मौसम में, इस दिलकश से मौसम में आपका मूड कैसे होता है, इस मौसम को कैसे एंजॉय करते हैं, इस ऑसम से मौसम को।

0: सरप्राइज़ ना, दिल से आवाज़ आ रही है। वैसे दिल की जो आवाज़ है ना, ये दिल वाले समझ सकते हैं, और कुछ लोग जो है ना दिल को समझते ही नहीं हैं। कुछ लोगों के दिल इतने सख्त होते हैं, इतने सख्त होते हैं कि उनको नहीं समझ आते यार। उनको जितना मर्ज़ी आप समझा लो, जितना मर्ज़ी उनको बता लो, जितना मर्ज़ी उनको प्यार से समझा लो, दिल से समझा लो, दिमाग से समझा लो। वैसे दिल से समझाना चाहिए कि दिमाग से समझाना चाहिए? अच्छा, अक्सर ना ये बड़ा सवाल एक उठता है ना, मामला दिल का है या दिमाग का है? लेकिन हम जब भी बात करते हैं ना, ये करते हैं कि यार मेरा दिल कर रहा है कि आज मौसम बड़ा प्यारा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊँ, आज मौसम बड़ा प्यारा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं पकौड़े खाऊँ, मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं ये करूँ। हम हमेशा दिल को मुखातिब करते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार मेरा दिमाग ये कह रहा है कि मैं ऐसे कर लूँ या वैसे कर लूँ। जहाँ पर दिल का मामला है ना, वहाँ पर दिल का मामला है। सो बात ये हो रही थी कि जो दिल को समझते हैं ना, जो अपने लोगों के दिल को समझते हैं, और ये समझते हैं कि किसी के दिल को हमने नहीं तोड़ना, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है, दिलों को जोड़ के रखना है, वो बड़े प्यारे लोग होते हैं। ऐना जैदी साहब, आप जैसे लोग होते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी सर, कौन है हमारे साथ?
1: बात कर रही है, सॉन्ग आपने प्ले किए, बहुत अच्छा सॉन्ग है, मैं पहली मरतबा में इसको सुन रहा हूँ।
0: चले जबरदस्त। कहाँ से बात करें?
1: क्वेटा से हम बात कर रहे हैं।
0: अच्छा, अभी आप कहाँ पे हैं?
1: अभी हम क्वेटा में घर पे।
0: क्या बात है, जबरदस्त। क्वेटा में बारिश हो रही है?
1: क्वेटा में बारिश नहीं हुआ, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है।
0: अरे वाह, क्या बात है। क्वेटा का मौसम ये बड़ा मजे का होता है ना, क्वेटा का मौसम अक्सर, अब तो खैर आजकल हवाएं चल रही होंगी, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत ठंडा मौसम है, इंसान जो बाहर भी सो सकते हैं, पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चला, फिर भी मौसम ठंडा है, और सुबह के टाइम 4-5 बजे आपको कर्सर भी लगेगा।
0: रियली?
1: हकीकत है, सीरियस बता रहा हूँ।
0: क्या बात है, इसका मतलब है कि अगर रात को बाहर सोना है तो क्वेटा आ जाए बंदा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। बहुत प्यारा मौसम है, यकीन करें इस साल जो है पिछले मौसम गर्म, इस बार माशाल्लाह बहुत ठंडा मौसम है।
0: चलें जबरदस्त है जी, बहुत खूब। लाहौर का मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ है, इस वक्त लाहौर में भी बारिश हो रही है।
1: हाँ, वो बारिश वगैरह वो तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए होगा, फिर दोबारा गर्म होएगा।
0: अच्छा। आपको यकीन है दोबारा गर्म हो जाएगा? अच्छा, चलें जी, सलामत रहें, अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू जी। और जनाब, दैट वाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ थे, और 04-2111-0101 हमारे रابطے का नंबर, आप लोग की कॉल्स को हम शामिल करेंगे, करेंगे ना जैदी साहब? चलो जी, जैदी साहब ने इशारा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, कौन है हमारे साथ?
2: इरफान बात कर रहा हूँ, लाहौर।
0: इरफान साहब लाहौर से। जी इरफान साहब, क्या कहेंगे? वो तो मुझे भी पता चल गया, आप क्या कहेंगे हमारे आज के टॉपिक के हवाले से? क्या कहेंगे?
2: मौसम की तरह आजकल शो भी बेस्ट चल रहा है,
0: जबरदस्त,
2: और टॉपिक आप रिपीट कर देंगे।
0: जिंदाबाद सर। टॉपिक आज का ये है कि हम अक्सर दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए बनना चाहते हैं, और इस बनने बनने में हम अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं, अपने आप को कुर्बान करते हैं। हम चाहते हैं कि यार हम लोगों की नज़र में बहुत अच्छे हो जाए। अच्छा यार, लाइन में शोर बहुत ज़्यादा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मुझे लाइन काटनी पड़ेगी। और जनाब सॉरी, मैं माज़रत चाहता हूँ, आप लोगों की लाइन में थोड़ा सा शोर है, तो इस वजह से ये इस कॉल को मुझे काटना पड़ा। अरे जनाब, देखते हैं कौन है हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है ये बारिश की वजह से थोड़ा सा है ना। वालेकुम सलाम ऑल द वे जनाब, सियालकोट से जायद हुसैन साहब हमारे साथ हैं। जायद भाई, कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह का करम है, और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम हो तभी तो वैसे फ्रेश हो जाती है।
0: अरे वाह,
3: शानदार,
0: क्या बात है। सियालकोट का मौसम कैसा है? सियालकोट में बारिश हो रही है
3: सर? फिर बारिश नहीं हो रही, सब कुछ हो रहा है, चाय पकौड़ों का इंतजाम भी हो रहा है, प्रोग्राम भी हो रहा है।
0: अरे वाह क्या बात है, चाय पी रहे हैं? कब चाय?
3: हाँ जी
0: जैदी सर, चाय अब होनी चाहिए यार, वैसे अब दिल कर रहा है। जैद भाई ने कहा चाय,
3: और चाय ना हो तो मजा नहीं आता, क्या ख्याल है
0: ना?
3: और हाँ, और दूसरा सबसे बड़ी बात है, कभी कभार दिल की मान लेनी चाहिए। जून जुलाई में भी जब दिख जाए ना चाय, तो पी लेनी चाहिए, कुछ नहीं होता।
0: सर चाय बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, चाय तो कमाल है।
3: चाय का मज़ा भी जब आता है कोई अपना साथ हो
0: है ना,
3: चाय मेरे ख्याल से चाय का सबसे एहतराम भी ये है कि उसे बैठ पिया जाए।
0: चाय का एहतराम करना चाहिए है ना
3: सर, 100% करना चाहिए। चाह है ना इसमें और दिल से होती है जी, और मच मरे तो फिर बात बनती है, और जब तक आपने अपना कुछ हासिल करना तो मच मारना पड़ता है, उस मच में आपको जलना पड़ता है, और फिर उसमें फिर और फिर आपको ये नहीं देखना कि आपका जा क्या रहा है, आपको ये देखना है मुझे फूल और मुझे चाह कहाँ से मिले।
0: बिल्कुल ठीक है
3: और इसी देखिए कुछ यकीन मैं तो हर जब हम हर किसी को कुछ कर ही नहीं सकते ना, इंसान है वो, हर कोई तो कुछ हो नहीं सकते, लेकिन मेरा ख्याल से हम कुछ चीज़ें ऐसी तो कर सकते हैं जो हमारे बस में हो। बाकी अपना सम टाइम तो ऐसा होता है कि इंसान अपना आप मार देता है कि या मेरा आस पास मेरी फैमिली, मैं आपकी बात सुनकर अच्छा जो होता है, जो ईद के दिन होते हैं वो वाली साहब जो अपनी खुशी मार कर अपने बी बच्चों के अपने बहन भाइयों की खुशियाँ को उजागर करते हैं, उस आदमी कितना बड़ा जिगरा होता है, जिसमें से देखो ना एक आदमी खुद कारोबार करके सरमाया घर पर लेकर आ रहा है, उस बाद में वो सब कुछ हाथी हाथी उनको लुटा रहा है, सर उस बंदे की तो मेरे ख्याल में कितना बड़ा दिल होता
0: है।
3: और अक्सर ये होता है कि लोग मैंने देखा है कि अपने लिए होता है एक शर्ट मिला पी खरीदे, लेकिन होता है दूसरों के लिए ये भी ले लें वो भी ले लें, अब दोस्तों की खुशी के लिए अपना मामला कर लें, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्त, बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, थैंक यू सो मच कॉल करने का। आमीन आमीन, आपको भी
3: बहुत बहुत शुक्रिया, आपको और तमाम सुनने वालों को सलाम।
0: आई जनाब, दैट वाज जाहिद हुसैन ऑल द वे सियालकोट से हमारे साथ थे। लाइन में थोड़ा सा शोर है, तो वो आपकी चाय से ना, वो क्या है वो चाय और चाहत एक जैसे होते हैं, मिले तो सुकून ना मिले तो बेकरारी है जी। तो अगर चाय का कप हो जाए तो जाहिद साहब क्या ही कमाल है, सीरियस हो गए आप तो है ना, मैं चाह रहा हूँ आप सीरियस हो जाएं। कुछ चीज़ों में सीरियस होना जो ना वो बड़ा ज़रूरी होता है सर, अगर ना सीरियस होंगे ना तो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इसको कहते हैं कि किसी को इमोशनली आप ना ट्रैप कर लें, इमोशनली जैसे मैंने अभी जैदी साहब को ट्रैप किया इमोशनली, मैं चाय कह के ना, तो उनकी चाहत है कि उन्होंने जनाब ये फैसला किया कि वो मेरे लिए चाय लेके आएंगे। अरे वाह, अच्छा ये चीज दर्द की मिठास भाग गई। जैदी साहब आपके नाम, दिल को बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए, दिल को बहलाने के लिए कुछ तो चाहिए, चाह ना सही तो चाय ही सही। सर ये जो चाहत है ना ये बड़ी प्यारी चीज़ है, और ये जो मोहब्बत है ना ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। आप ना थोड़े थोड़े मोहब्बत के जो जिसे कहते हैं ना इंजेक्शन, वो जेब में रखा करें, जहाँ पे आपको थोड़ी सी नफ़रत नज़र आए ना फौरन से पहले ना जनाब उस इंजेक्शन को लगा दें, जहाँ पे आपको नज़र आए कि मसला ख़राब हो रहा है वहाँ मोहब्बत का इंजेक्शन ठोक दें, جہاں آپ کو لگے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا گڑبڑ ہو رہی ہیں وہاں پہ آپ مسکراہٹ اور محبت پھیلائیں. یہ بڑی پیاری چیز ہے نا. سو جناب محبت والوں کے نام ایک اور بڑا ہی دلکش سا گیت جو کہ میں اس وقت سلانے جا رہا ہوں. سو دس از فار آل دا بیوٹیفل لولی اینڈ لائیولی لسنرز آف ایف ایم 101 اس وقت پاکستان بھر میں جہاں بھی ہماری آواز کو سنا جا رہا ہے. سبھی سننے والوں کے نام، سبھی چاہنے والوں کے نام.

All right, जनाब, दर्द न जाना दिल का. थैंक यू सो मच जहरी साहब, आपकी शायरी का बहुत बहुत शुक्रिया, इन मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया. सुनते हो उसकी मीठी बातों को सुनते हुए, हाय क्या बात है, दिल लगी दिल की लगी. जहरी साहब आपकी नज़र, सो कहता है कि सुनते हो उसकी मीठी बातों को, मैं उसकी बनाई हुई फीकी चाय पी गया. अरे जनाब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग कॉल कर रहे हैं ऑल द वे पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान भर में इस आवाज़ को सुना जा रहा है, तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है. सो एक ट्रैक ये जो मैंने चलाया है, सो दिस इज़ फॉर यू अजीम भाई, एंड द नेक्स्ट ट्रैक आई एम गोना प्ले. आय हाय हाय हाय, लोग पता नहीं क्यों लोगों से नाराज़ हो जाते हैं, मुझे नहीं समझ आता क्यों. इतनी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी में आप एक दूसरे से नाराज़ क्यों हो जाते हैं, मुझे इस बात की समझ नहीं आती क्यों दूरियां इख्तियार कर लेते हैं. और वैसे भी जहां पे मोहब्बत होना, मोहब्बत वालों को तो ज़्यादा देर नाराज़ रहना नहीं चाहिए. जब मोहब्बत वाले ज़्यादा देर नाराज़ रहते हैं ना, यकीन जाने मेरे दिल पे क्या गुज़रती है, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता मुझे कितनी तकलीफ़ होती है. सो जनाब, मोहब्बत वालों को तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना चाहिए. सो इसीलिए अगर आप किसी से नाराज़ हैं या कोई आपसे नाराज़ है तो आप उसको मना लें. अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो आप उसको मना लें. अगर कोई आपसे नाराज़ है तो आप हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लें. वैसे कहते हैं कि माफ़ी मांगने वाला बंदा जो है ना वो बड़ा होता है, तो इसीलिए माफ़ करते रहें एक दूसरे को. माफ़ी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है. अल्लाह ताला ने, हम अल्लाह ताला से ना बार बार माफ़ी के तलबगार होते हैं, और हर नमाज में हम माफ़ी मांगते हैं और इस बात को एक्सपेक्ट करते हैं, ऑलवेज ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रब हमें माफ़ करे, हम हमारे गुनाहों पे पर्दा डाले, हम पे रहम करे. हम उससे हमेशा माफ़ी के तलबगार होते हैं. और बंदे जो है ना, इंसान जो है ना, ये बड़ा अजीब है. ये तो बस कहता है कि बस मैं एक दफ़ा नाराज़ हो गया ना तो मैंने नहीं माफ़ करना, मैंने नहीं छोड़ना. सो जनाब, द नेक्स्ट ट्रैक आई एम गोना प्ले इज़ फॉर स्पेशली असमा फारूक, इस वक्त हमें सुन रही हैं असमा, आपके लिए. एंड जो ट्रैक मैं चलाने चाह रहा हूँ ये, दिस इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट. नहीं रहे नूर जी की आवाज़ को शामिल करूँगा. और वो लोग जो किसी से नाराज़ हैं, जो किसी से रूठे हुए हैं, उनसे यही कहूँगा, प्लीज़ मान जाए.

0: मुझे लगता है आप तो मान ले जाना चाहिए ना, अगर कोई किसी से नाराज़ है इस गाने के बाद, नहीं रनू जी की खूबसूरती आवाज़ के बाद मान जाना चाहिए। और जनाब ये कॉलर हमारे साथ हैं, लेट्स सी हु इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम।
1: यस अस्सलाम वालेकुम भाई।
0: वालेकुम सलाम।
1: हां
0: बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहब?
1: मैं अब्दुल हमीद सोका बात हूं बरसियारा।
0: जी अब्दुल हमीद साहब क्या कहेंगे?
1: मैं कहना क्या जरा नहीं मान लो रे 5-6 जाने जावे ना घर के बड़ी छेती मान ले फिर उन पता लगेगा कि खर्चा भी पड़ेगा फिर उन लोगों को जगह नहीं लगनी
0: थी। जरा नहीं मानता उन्होंने कहो कि बर्फी लो मेरे ऐसे को 5-6 किलो, फिर वो जेब जो तो खाली हो जाएगी ना, फिर कहेगा नहीं नहीं नहीं नहीं मैं नहीं जी मैं नाराज होना नहीं एक तो बात किसी ना।
1: जी
0: बर्फी बर्फी आजकल कितने रुपए किलो है वैसे?
1: हाँ जी
0: बर्फी का क्या रेट है आजकल?
1: आजकल 1000 रुपये चल रहा है इधर हमारे।
0: अच्छा आप यहाँ 1000 रुपये किलो है?
1: हाँ जी।
0: अरे वाह अरे वाह क्या कहने हैं सर। जैदी साहब आइंदा से आप बर्फी जो है ना ऑर्डर करिए फरुखाबाद, ठीक है उधर से मंगवानी है। बर्फी उथो मंगवा लांगे दूजे व्याह दी। हां जी हां जी
1: चलो अल्लाह करे व्याह हो जाए दूसरे व्याह ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਵਸੂਕ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਰ ਜਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ
1: ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛ ਲਓ।
0: ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ।
1: ਬੜਾ ਬੜੀ ਪਗੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ?
1: ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ
0: ਮੌਸਮ
1: ਖਰਾਬ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ
0: ਉਹ ਮੌਸਮ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ।
1: ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅੱਲਾ।
0: और इस जनाब 04-2111-0101 हमारे रबते का नंबर जिस पे आप लोगों की कॉल्स हमें मौसूल हो रही। वैसे मेरा ये मौजू नहीं था आज का रूठियों को मनाने का, वो अजीम साहब की मुझे कॉल आई थी तो उन्होंने बताया कि जी कोई उनसे नाराज़ है तो उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि आप वो मुझसे मान जाएं। तो मैंने तो उनकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए मैंने कहा जी भाई मान जाएं अगर आप उनसे नाराज़ हैं, जो भी उनसे नाराज़ है। और वैसे भी नाराज़ ज़्यादा देर रहना नहीं सही है ना अगर आपसे कोई अच्छा पता क्या होता है, ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है मैं आपको बताऊं। आप किसी से नाराज़ होते हैं ना किसी अपने से, और उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि हम नाराज़ होते हैं एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं ना वैसे वैसे दिलों के अंदर जो है ना कदूरतें नाराज़ियाँ नफ़रतें बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे आपके अंदर गलत फहमियाँ बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे बदगुमानियाँ आती जाती हैं, वैसे वैसे जो शैतान है ना वो आपके ऊपर पूरा हावी हो जाता है और वो ऐसे ऐसे वसवसे डालता है ऐसे ऐसे ख्याल डालता है। आपने तजर्बा किया होगा बहुत दफ़ा, एक ऐसा शख्स जिसके साथ आपका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बहुत अच्छा आपका रिलेशन है, आप उसके साथ बड़ी अच्छी एक रिलेशन के अंदर रहते हैं, उसने आपके साथ बहुत अच्छा किया होता ज़िंदगी में, बड़ी मोहब्बत की होती है, बड़ा आपके मामलात जो ज़िंदगी के आपके साथ ले के चला होता है। अच्छा जब उससे इख्तलाफ होता है ना और उससे जब किसी बात पे नाराज़गी हो जाती है किसी बात पे आप रूठ जाते हैं, आपकी जब दूरी होगी ना हमें ऐसे लगेगा कि एट द पॉइंट कि उससे ज़्यादा बुरा इंसान ही कोई नहीं है, और उस कि पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें जो बेचारे ने उसकी माफ़ी भी मांग ली वो भी हम निकाल के ना उसके सामने प्रेजेंट करेंगे, तुमने ये किया, तुमने ये किया, हम उसको ताने देंगे। ताने जो है ना वो सबसे पहले तो आपके ताल्लुक़ को, रिलेशन को ना कमज़ोर करते हैं, और फिर उसके बाद आप जैसे जैसे जितना टाइम गुजरता जाएगा ना, आप देखें इवन आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, आपके फ्रेंड्स के इश्यूज़ हैं, आपके कोई भी रिलेशन है, जितना आप उसको तवील करेंगे ना उतना आपका रिलेशन कमज़ोर होता जाएगा। और हम ये भी भूल जाते हैं एट दैट पॉइंट कि इसके साथ हमारा कितना अच्छा ताल्लुक रहा है, कितनी अच्छी दोस्ती रही है, कितना अच्छा वक्त गुजरा है, हम उस वक्त को भी याद नहीं रखते। हम बस जजमेंटल हो जाते हैं, हम जज बन जाते हैं, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, मतलब ये हमारा बिहेवियर हो जाता है। सो आई थिंक हमें सोचना होगा बड़ा। तो इसीलिए ये हम तो खैर बात कर रहे हैं ना, रिलेशनशिप को मज़बूत रखने के लिए वो बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी के साथ साथ अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होता है, अपने जज्बात पे कंट्रोल करना, अपनी ज़ुबान पे सबसे पहले कंट्रोल करना है। और फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की बात है, हमारे जो लव्स हैं किसी के दिल को कैसे घायल करते हैं, कैसे निस्तो नाबूद कर देते हैं, सिर्फ एक मिनट की बात, एक मिनट तो खैर मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, सेकेंड्स की बात है। कोई बात अच्छी नहीं लगी, हमारे मिजाज पे गरा गुजरी है और हम फौरन से रिस्पांस करते हैं, और ऐसा रिस्पांस करते हैं कि बस अगले की यू नो समझ गए ना आप मैं बयान। तो इसीलिए ये है कि रिश्तों की मजबूती इसमें है कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे के साथ अगर किसी से मोहब्बत है ना तो उसको, उससे उसकी गलतियों को भी आप कबूल करें, उसकी कमियाँ कोताहियों को भी कबूल करें। और ये ज़रूर सोचें कि हम में से परफेक्ट कोई भी नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई कोताही होती है, इंसानों से होती है। तो इसीलिए ज़्यादा देर तक ताल्लुकात को जो है वो ख़राब मत करें। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमान बेटा, कैसे हैं? ठीक
0: जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ?
1: खबर से बोल रही हूँ, माशाल्लाह टेम्पो न्यू जो लगा रहे हैं लड़की का ना, आपके 101 के नाम पर कोई नहीं बताता इनका नाम ना, ये बड़ा अच्छा। अभी जो इन्होंने माँ का सॉन्ग भी आपने प्ले किया,
0: जी, जी, जी, जी, जी, जी। मुझे भी नहीं पता वैसे इनका नाम,
1: तो ये डायरेक्ट आप लगा लाहौर वाले ही लगा रहे हैं।
0: जी जी,
1: लाहौर वाले और नहीं कोई, नहीं इनका नाम
0: आप सर्च करें ना, अब तो दुनिया में कोई चीज मुश्किल रही नहीं मैडम, हर चीज़ बहुत आसान है। क्या कहेंगी हमारे आज के मौजू के हवाले से, हम लोगों को खुश करने के लिए क्या क्या कुछ कर जाते हैं, अपना आप भूल जाते हैं,
1: पूरी तगड़ों के साथ रहते हैं कि भाई ये आना का मसला ना बने ना, समझा दीजिए। तो हम हर तरीके से करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इस रास्ते पे आने चाहते हैं, बता दें जिनके साथ अगर अच्छे रिलेशन भी गुजरे होते हैं ना तो वो फिर नहीं आते इस रास्ते दोबारा।
0: ठीक है,
1: कुछ आज तक इस रिश्ते में नहीं आए ना, क्योंकि ऐसा लोग करते हैं।
0: बिल्कुल ठीक,
1: अपने आप को ठीक रखे करिए बेटा,
0: बिल्कुल ठीक है। थैंक यू, आप भी दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, जी जरूर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और जनाब वेलकम बैक, और मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त सी विश करनी है, एक हमारी बहुत प्यारी बेटी है एंड शी इज़ इन यूके, जोया, जोया की आज बर्थडे है। जोया वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 की जानिब से, हम सब की जानिब से, तमाम सुनने वालों की जानिब से हैप्पी बर्थडे टू यू, सलामत रहो, खुश रहो, जीती रहो। और द नेक्स्ट ट्रैक आई एम गोना प्ले स्पेशली फॉर यू जोया, एंड अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, और आई एम सो हैप्पी कि आज आपकी सालगिरह है। सो द नेक्स्ट ट्रैक जो मैं चलाऊँगा स्पेशली फॉर यू जोया। अच्छा जनाब, एक मैं जो अभी जो नेक्स्ट ट्रैक अभी चलाने जा रहा हूँ, दिस इज़ एक हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी सिंगर हैं, एंड आपने थोड़े दिन पहले उनको सुना, एंड शी इज़ अमेजिंग सिंगर। मैं देखता हूँ बाज़फ़ा हमारे ऐसे ऐसे टैलेंट हैं, ऐसे ऐसी क्लासिकल आवाज़ें हैं, ऐसे ऐसे क्लासिकल सिंगर हैं, सो उनको सुनने के बाद पता चलता है कि यार पाकिस्तान इज़ सच अ फर्टाइल कंट्री कि जहाँ पर इतनी खूबसूरत आवाज़ें हैं। सो द ट्रैक आई एम गोना प्ले इज़ प्यारा है अंधियारा, इट्स बाय تنزیلہ مغل کی آواز میں اس ٹریک کو میں چلاؤں گا اینڈ ویری میلوڈیس وائس اور بہت خوبصورت ٹریک. سو دس از فار آل آف یو. پھر اس کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے. سنتے رہیے ریڈیو پاکستان ایف 101. مجھے کہتے ہیں فرحان خان. ٹریک. سو دس از فار آل آف یو. پھر اس کے بعد ہم لوٹ کے آئیں گے. سنتے رہیے ریڈیو پاکستان ایف 101. مجھے کہتے ہیں فرحان خان.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे पाकिस्तान, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक खुशबाश, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे मेरे साथ साथ होंगे। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, प्रोग्राम का नाम 101 इंटरनेशनल। उम्मीद है, दुआ है, यकीन है तमाम सुनने वाले बिल्कुल फिट फाट टिप टॉप सेट कूल एक सान एंड स्ट्रांग हेल्थ के साथ मेरे यानी कि ज़िशान नासर के बिल्कुल साथ साथ होंगे और प्रोग्राम जिसका नाम है 101 इंटरनेशनल, इसको सुनने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। सुनाए जनाब, क्या हाल चाल है, जिंदगी कैसी चल रही है? भाई इंटरनेशनल जा रहे हैं हम, इस वक्त हम सुने जा रहे हैं खलीजी रियासतों में, यानी कि खास तौर पे अगर हम बिलखसूस बात करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि दुबई, अमान, अजमान, यूरोप की बात करते हैं यानी कि इटली, रोम, फ्रांस, अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं यानी कि लंदन, इंग्लैंड, ब्रैडफोर्ड और अगर हम बात करते हैं USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, शिकागो, टेक्सस, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क एंड जर्सी और जहां जहां पर भी हमें सुन रहे हैं www.radio.gov.pk के थ्रू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ रहने के लिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं यार। और 12:08 पाकिस्तान का मेरी वक्त और 13 जून शुरू हो चुका हफ्ते का दिन 2026, बैक टू बैक 101 इंटरनेशनल। बहुत सारी बातें आज हम आप लोगों से करेंगे, बहुत मजे का प्रोग्राम आज हम करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास जो कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं और फिर हम उनको करेंगे आज आंसर। तो आज उन तमाम तर लोगों के लिए मौका है जो कि अक्सर मुझे क्वेश्चन करते हैं इंस्टाग्राम पे और मैं उनको लिख के भेज देता हूं कि भाई आई विल आंसर इन द शो, और मैं नहीं कर पाता हूं क्योंकि उसकी वजह ये होती है बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि मैंने करनी होती हैं, वो करते करते करते करते फिर बीच में कॉलर्स भी आ जाते हैं, फिर डायमेंशन चेंज भी हो जाती है, फिर जिक्र उसकार की महफिल शुरू हो जाती है, तो फिर उस सारे मामलात में कहीं ना कहीं पर टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए आज का जो शो है वो पूरा शो ही मैंने डेडिकेट किया है, क्योंकि आज का शो मेरा प्लान शो नहीं है ना, शेड्यूल शो नहीं है। आज खुरम बेग प्रोग्राम करते हैं, आज वो मसरूफ हैं, आई थिंक इस्लामाबाद में नहीं है। सो मैनेजमेंट ने मुझे कहा कि ज़िशान क्या आप आ सकते हैं, मैंने कहा जी क्यों नहीं आ सकते हैं, भाई पैसे मिलने चाहिए यार, मैं तो वैसे भी हलाल पैसों के चक्कर में 24 घंटे रहता हूँ। सो मैंने कहा चेक बढ़ेगा भाई, चेक मजीद भारी हो जाएगा, इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। सो 101 इंटरनेशनल के साथ हम मौजूद हैं, मेरा आपके साथ ठीक अब से लेकर 2 बजे तक है। कल के शो के हवाले से एक डेवलपमेंट है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल मैंने ये कहा था कि हमारे जो टर्किश हीरो हैं, जो हमारे FM 101 चैनल पाकिस्तान की फ्रेटर्निटी के सबसे हैंडसम आरजे हैं, जिनका नाम है आरजे गजनफर महमूद कियानी उर्फ चिकनाहट के बेताज बादशाह मुझे चूंकि जब मेरी उनसे लास्ट बात हुई थी, उन्होंने कहा था ज़िशान भाई मैं 15 दिनों के लिए कश्मीर जा रहा हूं, तो जो मेरे सैटरडे के इंटरनेशनल शोज हैं, चूंकि आपका 10 से 12 होता है तो आप उसको भी थोड़ा सा मैनेज कर लिया करें। मैंने पिछले हफ्ते उसको मैनेज कर लिया, तो मेरे जहन में ये था कि चूंकि वो 15 दिन के लिए गए हैं तो शायद कल भी वो मौजूद नहीं होंगे, और इसलिए मैंने आपसे कहा था कि कल चूंकि मेरा 10 से 12 तो है ही, मैं फिर उसको थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लूंगा जैसे मैंने लास्ट वीक किया था इनफैक्ट। लेकिन मेरी आज उनसे बात हुई है, मैंने कहा मैं कंफर्म कर लूं, क्योंकि आज मैं फिर आपको बता के जाऊं, ये ना आप इंतजार करते रहें और जब गजनफर भाई आए तो फिर आप कहें कि ज़िशान कहाँ है, ज़िशान कहाँ है, ज़िशान कहाँ है, तो मैंने कहा ज़िशान खुद ही बता दे आप लोगों को, कितना सोचता हूँ यार मैं आप लोगों के बारे में, कितना सोचता हूँ मैं आप लोगों कितना तो खैर मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा गजनफर महमूद कियानी भाई उर्फ चिकनाहट के बेताज बादशाह, क्या आप कश्मीर से वापस आ गए हैं या कश्मीर में हैं? तो उन्होंने कहा ज़िशान भाई क्योंकि कश्मीर के हालात थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे, इसकी वजह से मुझे वापस जल्दी आना पड़ गया, सो दैट इज व्हाई मैं कल अवेलेबल हूं। लेकिन वो इतने अच्छे यार, इतना स्वीट आदमी है, मुझे तो डर है कि कहीं मैं उनसे बात कर दूं मुझे शुगर ना हो जाए। सो वो इतने अच्छे आदमी, उनका ज़िशान भाई अगर आपने अनाउंस कर दिया है कि आप करेंगे तो आप करें, मैं छुट्टी कर लेता हूं। मैंने कहा नहीं मेरी जान, मैं सदके जाऊं, कुर्बान जाऊं, एक पपी इधर एक पपी उधर, सो आपका शो है तो आप जरूर आइएगा, इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। तो कल जो मेरा शेड्यूल प्रोग्राम है जो कि 10 से 12 होता है, उसके चांसेस हैं कि मैं उसके लिए आऊंगा कल 101 इंटरनेशनल के लिए, गजनफर महमूद कियानी इंशाल्लाह अजीज खुद आएंगे, मेरा जो शेड्यूल प्रोग्राम होता है 10 से 12 में उसके लिए आऊंगा। लेकिन मैं अगर उसके लिए आऊंगा तो पैसे तो मुझे नहीं मिलेंगे यार, क्योंकि वो डेट सेम हो जाती है, तो वैसे मैंने सोचा ही नहीं यार। चले इसके बारे में हम सोचते हैं, हो सकता है कि कल फिर मुलाकात आपसे, नहीं नहीं नहीं पैसों की तो बात ही नहीं, मैं पैसों का कभी सोचा ही नहीं मैंने, आऊंगा यार आऊंगा। तुम एक तो तुम लोग बहुत तंग करते हो यार, पता नहीं यार पोस्ट लगी अभी तक फेसबुक के ऊपर कि नहीं लगी, क्योंकि हमारे जो दो बेहतरीन ड्यूटी ऑफिसर साहिबान हैं उनमें से लग चुकी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया। हमारे बड़े बेहतरीन टीम मेंबर हैं वसीम भट्टी साहब, और बहुत ही दिलदीदा शख्सियत है, मतलब ऐसे खूबसूरत इंसान है, इतने अच्छी बातें करते हैं, इतना अच्छे अखलाक के मालिक हैं,
कि मेरा तो दिल करता है कि मैं बस 101 में ही रहूं, मैं इधर एक कमरा ना ले लूं यार, मैं इधर ऊपर एक कमरा ले लेता हूं। वैसे भी मुझे वो कहते हैं ना, हाय हाय हाय, हजरत जॉन सरकार का एक शेर याद आ गया। हजरत सरकार जॉन एलिया फरमाते हैं कि अब जो आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मैडम सुनिएगा जरा है, नहीं मैडम सदफ की बात नहीं कह रहा मैं, और मैडम की बात कह रहा हूँ। वो मैडम तो सुन ही रही होंगी, मतलब मैडम सदफ तो सुन ही रही होंगी। मैम सदफ की गलती गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मैं वैसे इन जनरल मैडम जो है ना उनकी बात कह रहा हूँ। हाँ सो मैडम जरा सुनना सवाल, नहीं शेर सुनना, शेर। हाँ वो कहते हैं कि अब जो आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, अब जो आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी जिंदगी में तन्हाइयों के सिवा कुछ नहीं। अब जो आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी जिंदगी में तन्हाइयों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। सो हम एक कमरा ले सकते हैं यार, मेरे पास चंद किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, ट्रस्ट मी। बहरहाल जनाब, फीफा वर्ल्ड कप 2026 इस वक्त जारी है और मैच शुरू हो चुका है बिटवीन कनाडा और मेरा ख्याल बोस्निया के दरमियान मैच शुरू है। मैं कंफर्म नहीं है, मैं चेक करके बताता हूँ, बिकॉज मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे फुटबॉल से उतनी ही दिलचस्पी है जैसे वालदैन को अपने दरमियान वाले बच्चे से होती है। तो खैर 11 मिनट का तकरीबन खेल जारी हो चुका है, 12 बजे ये मैच शुरू हुआ था और तकरीबन 12 मिनट का खेल हो चुका है। टोटल 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं और फिर इस तरह के मामलात होते हैं। खैर जी, 0501111001 दैट इज द नंबर टू डायल ऑन, इसके ऊपर आप हमें बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। कॉल कीजिए, जरा गपशप लगाते हैं। कुछ सवाल है आपका किसी भी हवाले से है तो प्लीज आप मुझे इंस्टा पे भी भेज सकते हैं, आप मुझे कॉल करके भी कह सकते हैं, मैं आज इंस्टेंट उसका रिप्लाई करूंगा। तो आज आप सभी लोगों के पास गोल्डन चांस है। आज मेरे पास कुछ भी घर से तैयार करके, तो खैर मैं वैसे भी नहीं लेकर आता, लेकिन अगर हम वैसे जाहिर है अब 2 घंटे पूरे करने हैं तो कोई ना कोई गुफ्तगू तो मैं जरूर करूंगा, कुछ ना कुछ बात तो करके ही जाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये टाइम फुली फुली फुली आपके लिए डेडिकेटेड हो, जो कि मैं भी चाहता हूं, सो आप लोगों से गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप कोशिश कीजिए, कॉल कीजिए 0501111001 या फिर 0510001 पे तो आप करोगे, या फिर 0519202540। ये जो रابطے का नंबर है ना, ये बड़ा बेहतरीन नंबर है, इस पे कॉलें बढ़िया आती है। 0519202540, इसके ऊपर कॉल करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड पूछ सकते हो, आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हो नहीं बताओ, नाम नहीं बताना चाहते हो नहीं बताओ, कोई भी बात जिस पे आप चाहते हो कि यार लेट्स टॉक अबाउट दैट, आओ बात करें ना। इसके अलावा अगर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना चाहते हो तो वो करो, वो तमाम तर लोग जो के करते हैं और मैं उनको रिप्लाई में करता हूं कि आई विल आंसर इन द शो, आज उनके पास मौका है यार, कॉपी पेस्ट करके दोबारा अपने सवाल भेज दो, मैं एक एक करके सबको आंसर करना शुरू करता हूं। और अगर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करना चाहें तो जिशान नासर 26 लिखिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, जिशान नासर 26।

0: ना हो इंतजार जहां मेरी कहानी तेरे साथ मेरे जानी। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जनाब जनाब जनाब, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। क्या हाल है इक्तदार साहब?
1: अली फ्रॉम कराची।
0: सर, अली का हमेशा इक्तदार ही रहा
1: ये बात बिल्कुल दुरुस्त है।
0: है, पर ये वो इक्तदार है जो सिर्फ जमीन पर नहीं रहा, दिल पे रहा
1: क्या बात है।
0: है।
1: देखिए, इक्तदार से कल झुकता है, तलवार से सर झुकता है।
0: भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह।
1: तलवार से सर झुकता है, किरदार से कलम झुकता है।
0: अरे अरे अरे अरे अरे,
1: क्या बात है।
0: सर सुनाए।
1: और मैं सुबह से इंतजार कर रहा था कि आपका प्रोग्राम आएगा इंशाल्लाह आज।
0: हाँ
1: और हालांकि मैं जानता हूँ,
0: हाँ
1: मैंने एक चीज हमेशा से पढ़ी हुई है,
0: हाँ
1: इकोनॉमिक्स का कानून है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स।
0: अच्छा,
1: जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे आउटपुट कम होता है, अफादियत कम होती जाएगी।
0: हाँ
1: यानी बार बार लीगल कदर खो देता है उसका आना जाना।
0: हाँ।
1: मगर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ कि आपका मैरिट देखते हुए मुझसे रुका नहीं जाता।
0: सर, मैं आपके हवाले से एक और कानून मुतारिफ कराता हूँ, बल्कि एक और कानून नहीं, एक कानून मुतारिफ कराता हूँ। जैसे आपने एक इक्वेशन बताई, मैं भी एक इक्वेशन बताता हूँ। सो बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके हवाले से हमारे दिल पे पता है कौन सा कानून अप्लाई होता है?
1: कौन सा?
0: डिमांड एंड सप्लाई वाला। आपकी डिमांड बड़ी है तो हम सप्लाई भी ज्यादा रखते हैं फिर।
1: इकोनॉमिक्स का ही कानून देखिए, आपने लाजवाब कर रही है।
0: सर देख ले फिर। सर आपके कदमों की धूल को सर हमने माथे का झूमर बनाया, वरना हमारे
1: नहीं,
0: अंदर
1: नहीं,
0: तो
1: नहीं,
0: कुछ भी
1: नहीं,
0: नहीं
1: नहीं
0: है
1: ये
0: सर,
1: बात
0: हमारे
1: बिल्कुल
0: अंदर तो
1: नहीं
0: कुछ
1: है,
0: नहीं है सर।
1: बल्कि मैं तो आपकी गुफ्तगू का रवानी और बलजस्तगी जो है, जो मैंने कल कहा था उस दिन,
0: हाँ,
1: वो ऐसा है कि वो दिल पे नक्श कर ले। बेहतरीन
0: अल्लाह अल्लाह हम
1: है,
0: सलाम,
1: बेहतरीन
0: अल्लाह हम
1: बेहतरीन
0: सलाम।
1: है। और वाकई आप बात सही कह रहे हैं
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: कोई आप टॉपिक लेकर आए और कॉलर कोई और गुफ्तगू छेड़ दे तो
0: हाँ
1: गुफ्तगू कहीं से कहीं चली जाती है।
0: ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही,
1: अभी
0: ऐसे ही।
1: जैसे आपने कहा कि आप माशाल्लाह बोलते हैं तो फिल्मी बोलते हैं, कोई
0: हाँ,
1: स्क्रिप्ट तो लिखा हुआ नहीं है
0: नहीं
1: आपके
0: सर,
1: पास और
0: नहीं।
1: ना आप लिखा हुआ पढ़ते हैं और बोलते हैं। आप तो बलदस्तगी के साथ बस कॉलर जैसे जैसे आते रहते हैं वैसे वैसे आप जवाब देते रहते हैं, प्रोग्राम मरतब होता जाता है।
0: ऐसे ही, ऐसे
1: इसमें
0: ही।
1: कोई शक नहीं है कि आपके पास हर गावियर से, चाहे आवाज आपको आपका आप सुर बकेर दें तो और रंग होता है, रूहानियत बकेर दें तो और इंसान उसके अंदर चला जाता है कश्फ की मंजिल पे। आप अगर सियासत पे, हालात पे, हजरत पे, शायरी पे और खेल बनोने के किसी चीज को भी उठा ले, आप उसमें बोलने में मास्टर हैं, मास्टर।
0: सर वो कहते हैं कि यहां पर लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं,
1: जी
0: यहां पर लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती हैं, जो ना समझे तो पानी
1: हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह
0: है।
1: वाह। जॉन एलिया, आपने बिल्कुल सही कहा। जॉन एलिया के लिए मैंने एक आलिम से पूछा था कि वो उनके रबानी अशार सुना रहे थे मुझे, तो
0: हाँ
1: मैं उनकी पर्सनल लाइब्रेरी से जब गुफ्तगू कर रहा था तो तब मुझे टाइम का नहीं पता चला।
0: हाँ
1: और कभी वो फारसी पे गुफ्तगू करते थे, कभी अरबी पे, कभी इंग्लिश पे, कभी उर्दू पे, और उन्होंने अपने भी अशार सुनाने शुरू किए। आखिर में गुफ्तगू खत्म हुई जॉन एलिया पर, उन्होंने सुनाना शुरू किया, एक दो लगत मतलब बन के बन बांध दिए उन्होंने जॉन एलिया पे। तो मैंने कहा लामा साहब ये बताइए, जॉन एलिया के लिए एक जुमला बोलिए बताइए। कहने लगे जॉन एलिया मरहूम को समझने के लिए 50 साल दरकार हैं,
0: हाय हाय हाय हाय हाय। मैं आपको
1: पचास
0: इससे
1: साल
0: मैंने भी एक सवाल किसी से पूछा था कि जॉन एलिया के लिए कोई एक जुमला इरशाद फरमाइए, उनका एक जवाब था, वो आपको इससे भी ज्यादा लुत्फानंदोज महसूस होगा। आप अगर कहें तो मैं सुनाऊं आपको।
1: हाँ हाँ जरूर।
0: वो मैं एक जगह पर गया तो वहां पे मुशायरा एक था। मैं बहुत जिंदगी में बड़े कम मुशायरों में गया हूँ, हालांकि मुझे शायरी से आपको पता है दिलचस्पी भी बहुत है। लिखने वाला तो चलो खैर, मैं कहाँ मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं लिख सकूँ, लेकिन सुनने की हद तक तो बहुत शौक भी रहा, शगफ भी रहा। तो मैं हालांकि मैंने जिंदगी में मेरे ख्याल से गिने चुने कोई 8-10 मुशायरे अटेंड किए होंगे। तो खैर मैं एक मुशायरे में गया, वहां पे आपने सुना होगा अताउल हक कासमी साहब, बड़े पाकिस्तान का एक बहुत
1: बिल्कुल
0: बड़ा नाम
1: बिल्कुल
0: है। तो
1: बिल्कुल सुना।
0: मैंने उनसे पूछा कि हजरत सरकार जॉन एलिया के बारे में आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ये कहता हूं कि उनका नाम गलत है, मैंने कहा समझ नहीं आई, नाम गलत से मुराद। कहते हैं उनका नाम होना चाहिए जॉन एलिया, नहीं जॉन ओलिया। उनका नाम होना चाहिए जॉन ओलिया।
1: देखिए ये वो उसी जुमले की उन्होंने उसको एक्सप्लेन करके बताया है कि मतलब आपका कलाम ऐसा होता है कि आपने उसको जमा कर सेवा इस्तेमाल करके ओलिया में ले आया।
0: मैं आपको एक और मजे का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है अहमद फराज साहब से मेरा ख्याल से शायद वो मेरी पहली और आखिरी मुलाकात है, लाइक मुलाकात भी नहीं, वो एक मतलब मेरी उम्र उस टाइम कोई 11-12 साल रही होगी, तो आपको ख्याल है कि अब क्या वो मुलाकात उसको कहना। लेकिन बार कैफ मुझे उनका ना एक जुमला याद है, उस टाइम समझ नहीं आया, लेकिन बाद में फिर मैंने बहुत सारी जगहों पर उसको सुनाया भी और लोग बहुत महजूज भी हुए। पिंडी और इस्लामाबाद से एक शायर ताल्लुक रखते, वैसे तो कौमी सतह पर भी उनको जाना जाता है, उनका नाम है महबूब जफर। तो महबूब जफर, तो अहमद फराज साहब एक दफा बैठे हुए थे, मुशायरा हो रहा था, महबूब जफर भी उनमें मौजूद थे, अल्लाह उनको जिंदगी दे, महबूब जफर साहब तो अभी हैं, अहमद फराज साहब तो गरीके रहमत हो गए। सो एक खातून वहां से मुशायरे से इजाजत लेके जाने लगी, तो उन्होंने कहा कि अब वो शायर महबूब भाई बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि महबूब भाई खुदा हाफिज, मतलब जाहिर है जिस तरह लोग जो है वो रस्मन कहते हैं महबूब भाई खुदा हाफिज। तो अहमद फराज साहब ने कहा कि खातून जरा बात सुनिए, तो वो जाहिर है अहमद फराज साहब द लेजेंड थे, तो खातून आई उनके पास, तो उन्होंने कहा जी बताइए, तो उन्होंने कहा कि खातून याद रखिएगा कि महबूब कभी भाई नहीं होता। खातून याद रखिएगा कि महबूब कभी भाई नहीं होता। ये बहुत बढ़िया बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई दूसरी राय
1: होता है। इसी हिसाब से आपके जो जुमले होते हैं प्रोग्राम के सारे बम में लग गए, तो सुनता हूँ और लोग अगर सरसरी तौर पर चले जाते हैं ना, जुमला नहीं समझते हैं, तो उनको उनको दोबारा सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि आपने क्या बात कही, ये क्या
0: ऐसे ऐसे सर, इसीलिए तो कभी आप गौर करें ना, तो मैं अक्सर अपनी गुफ्तगू के दौरान कहता हूँ कि इस बात को कल समझ लेना, परसों समझ लेना, 10 साल बाद समझ लेना।
1: याद कहते हैं
0: और मेरे पास ना एक बड़ा
1: यही बात सोच के ही मैं जो जॉन एलिया का वो जुमला वो मौलाना साहब ने जो कहा था 50 साल बाद लोग समझेंगे कि वो क्या थे।
0: हाय हाय हाय
1: हाय। तो बात ये कि अभी तो आप सरसरी बोल रहे हैं, लोग अगर प्रोग्राम को दोबारा सुने, और उनको सुनना चाहिए, मैं इतने लाखों आपके लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं इस वक्त, उनको यही मशवरा दूंगा कि आपका चैनल का प्रोग्राम आ जाता है उसको दोबारा सुना करें।
0: हालांकि मैं आपको सर एक बात बताऊं, बाखुदा एक बात
1: इसलिए कि आप सबको ये मशवरा देते हैं कि आज जो भी आप बीज बोएंगे, आप 30-40 साल बाद उसकी फसल काट रहे होंगे।
0: और सर मैं आपको एक बात बताऊं, बाखुदा मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं कि मुझे इस चीज के ऊपर, आप जाहिर है एक उम्र गुजारी है, आपने आपको अंदाजा होगा, मैं ओपनली बहुत सारी बातें आप रेडियो पे नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको इशारतन भी एक बात बताऊं ना कि मुझे इस चीज को देख के जिंदगी में कभी अगर चले, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं, आप अपना एक्सपीरियंस रख के मुझे बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जैसे मैं होस्टिंग करता हूं, जैसे मैं कॉन्सर्ट होस्ट करता हूं, या मैं थोड़ा बहुत टीवी पे काम कर लेता हूं, या मैं टीवी सीरीज बना लेता हूं, ठीक है, आपको क्या लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा पैसा कमाने का मौका या अपॉर्चुनिटी या ऑफर कहीं से आई होगी, तो किस तरफ से आई होगी, आप जरा गैस कर सकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं।
1: प्रोग्राम होस्ट करने के लिए
0: सर मुझे सबसे ज्यादा अगर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आई जिसको मैंने डिक्लाइन किया, वो जिक्र था, क्योंकि मैं इसको बेच नहीं सकता।
1: ये तो आपने बिल्कुल अजीब मौजू छेड़ दिया।
0: मैं आपको
1: डॉलर दें तो उसमें एक दो जुमला बोल,
0: आप बोलिए बोलिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं इसकी वजह भी बताता हूँ।
1: असल में मैंने जितने भी पढ़े लिखे लोगों का चैनल के ऊपर देखा है प्रोग्राम, तो उसमें मुझे मुश्किल से 1000 मिले, बहुत ही मुश्किल से, मगर अगर उसके बरखिलाफ अगर मौसीकी हो, गजलें हो, गीत हो, गाने हो, उसमें लाखों की तादाद में उनके देखने वाले हैं
0: जी। अच्छा,
1: जब मैंने दोनों का फर्क महसूस किया तो मुझे ये समझ में आया कि जब आप जिक्र दे रहे होंगे तो उसमें अकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
0: मैं आपको इसको थोड़ा सा ओपन करके बताता हूँ आपके लिए, बतौर होस्ट नहीं। देखिए, होस्ट जब आप होते हैं तो आप एक हद तक, आपकी एक लिमिट होती है, आपने सवाल करना है, जवाब सुनना है, फिर पलट के सवाल करना है। आप खुद जिक्र उसमें नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप मेहमानों से जवाब सवाल नहीं करेंगे और खुद जिक्र करेंगे तो फिर मेहमानों का वहां पे होने का क्या मकसद है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, सो एज अ होस्ट की बात नहीं कर रहा, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मुझे मुतअद्दिद हलकों ने ये बात कही कि आप आए हमारी मेंबर पे पढ़ें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं ओपनली, अब जाहिर है बहुत सारी चीजों को नहीं, ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, आपकी हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन मसला यह है कि जब आप किसी खास मकातबे फिक्र से जुड़कर पढ़ते हैं ना, तो फिर आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो वो मानते हैं, चाहे फिर उसमें वो सही गलत का फिर आप तमीज भूलते हैं।
1: आप मेरे जुमले पे यकीन करेंगे?
0: मैं कर लूंगा सर।
1: मैंने सारी जिंदगी, मेरे पास लोगों की खींची हुई तस्वीरें हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कभी भी ना डिमांड किया और ना कभी लिया, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता हूँ। इसीलिए वो चीज पढ़ जाता हूँ जब घर में आके सोचता हूँ कि ये चीज मैंने कैसे मफूम अदा कर दिया।
0: भाई वाह,
1: ये तो मैं बकौल एक आलम दीन के कि ये मेरे एजेंडे में शामिल नहीं था आज का, आज की मजलिस के। ये बात कहाँ से आई है ये मैं नहीं जानता। मैं भी पढ़ के जब आता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि ये मैं सोच के तो नहीं किया था।
0: ऐसे ही है,
1: इसलिए कि मैं उसकी उजरत नहीं लेता हूँ।
0: ऐसे ही है, ऐसे ही है।
1: और आपने कितनी बड़ी बात की थी, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल था, ऐसे जवाब मैं नहीं दे सकता था।
0: आप यकीन करें,
1: मैं सिर्फ ये समझता है कि आपके लिए मैं कोचिंग का लेवल इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि आप प्रोग्राम होश बहुत करते हैं
0: सर, सर
1: बहुत करते हैं, बेहतरीन तरीके से करते हैं। कभी मुतअद्दिद जगहों पे आप बुलाए जाते हैं और बुलाए जाएंगे आप इंशाल्लाह। और जो आपने कल दो चार लोगों के जानी पहचानी शख्सियतों के नाम लिए हैं, मैं उनको बुलाना जरूरी नहीं समझता हूँ। वहां तक आपकी उन्होंने आप तक रसाई की है, तभी तो आपकी आप पहुंचे हैं वहां तक
0: सर। बहुत
1: अगर आपका टैलेंट ना पहुंचा होता तो वो आपका कनेक्शन कैसे कायम होता?
0: सही बात है, सही बात है, आप सही कह रहे हैं।
1: आपका इल्म, आपका मैरिट, आपकी गुफ्तगू, आपका बोलना लोगों को अट्रैक्ट करता है, तभी तो वहाँ लोग आपसे रुजू कर रहे हैं।
0: हकीकत है, हकीकत है। और सर आज ना ये हमारी हमारी
1: बस आखिर में एक शेर सुनाऊंगा। अखबार साहब, 50 साल आपने जॉब की मुख्तलिफ इदारों में, तो आपने क्या हासिल किया? मैंने कहा बारे अलम उठाया रंगे निशाद देखा।
0: वाह,
1: बारे अलम उठाया रंगे निशाद देखा, आए नहीं है यूं ही अंदाज बेहिसी के।
0: भाई वाह, भाई वाह, कमाल कमाल।
1: एक्सपीरियंस अब ये है कि बच्चे मुझसे, नौजवान बच्चियां, बच्चे जो के कोई इंटरनी के तौर पे आते हैं, सीखने आते हैं, नए आते हैं, मुझसे पूछते कि मशवरा दीजिए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अपनी ताकत बचाइए अपने आने वाली फैमिली के लिए। आज बताएंगे तो आपकी ताकत कल काम आएगी। अपना बटवा बचाइए तो अगर अपना बटवा आज आपने बचा लिया ना, तो आपको फ्यूचर में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।
0: हकीकत, हकीकत,
1: वो बचा गए।
0: अच्छा, हमारी ना आपको देख, हमारी एक हमारी एक बड़ी अच्छी
1: खुशनसीब है,
0: हमारी ना एक बड़ी अच्छी लिस्टर हैं, खुशबख्त एजाज अहमद खान साहब। उन्होंने कल एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, वो मुझे, मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ उन सभी लोगों से कि जो मेरे से सवालात पूछते हैं वो इंस्टा पे जरा दोबारा मुझे भेज दें, ताकि वो क्वेश्चन रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि उनका क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा मेरे माइंड में, और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था उनका। उनका क्वेश्चन ये था कि कोई भी अपने अहले खाना को लेकर तो जंग पे नहीं जाता, तो ये वाकया थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन हो जाए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग पर नहीं गए थे, हजरत अब्बास को फिर उन्होंने हुक्म क्यों नहीं, अगर उनको जबरदस्ती उन पर एक जंग मुसल्लत कर दी गई थी तो हजरत अब्बास साथ थे, तो फिर उनको हुक्म देना चाहिए था कि आप इस जबरदस्ती मुसल्लत की हुई जंग को जो है वो उसके हवाले से देखे मामला को, तो क्यों नहीं किया? बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा सवाल है मुझे ना, खास तौर पर मुझे मुझे इस सवाल मुझे मुझे बहुत अच्छा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग इस तरह सवाल करते हैं, उसकी वजह यह है कि इससे पता ये चलता है कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं, उनके दिल में एक तिश्नगी है। आप समझ गए मेरी बात? सो मैं आज इसके ऊपर ना, मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में चल के इस सवाल को आंसर जरूर करूंगा अपने इल्म के मुताबिक। आप सुनिएगा इसको, ठीक है?
1: करने की जरूरत है। और आपको कुछ नसीब है कि ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है कि लाखों लोग आपको सुन रहे हैं।
0: हाँ, ऐसा ही हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं।
1: आपको ये तो इसकी खलिश दिल में होती है।
0: हाँ,
1: इस तरह की होस्टिंग करने की सारी समस्या मेरे दिल में रहती
0: है। अरे अरे, अच्छा अच्छा, मैं आपको शेर सुनाता हूँ ना।
1: गुजर चुका है
0: मैं
1: आपको और तरक्की दे।
0: इख्तदार साहब
1: हमें उर्ज पर पहुँचा है। और ऐसे एक वक्त तो ऐसा भी आएगा कि आप सोचेंगे कि मैं कौन सा प्रोग्राम करूँ और कौन सा छोड़ूं।
0: सर मैं आपको ना एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ, फिर आपसे इजाजत लेता हूँ। वो जिक्र हुआ ना कि आप हमारी तरफ आके पढ़े, हमारी तरफ बैठ के पढ़े, ऐसे पढ़े, तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि वो मैंने कहा कि यार जहां पर मैं हूं ना, अभी आपने कहा कि आपको ये सीट मुयसर है, ये कुर्सी मुयसर है, तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं जहां पर हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत बेहतर हूं। उसकी वजह यह है कि फकीर जिस जाम में पी ले वही पैमाना है, फकीर जिस जाम में पी ले वही पैमाना है, और जिस जगह बैठ कर पी ले वही मैखाना है।
1: जवाब देना बहुत तुम लोगों का।
0: चले सर, दुआओं में याद रखिएगा, हमें दुआओं में आपने याद रखना है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वल जी, कॉल्स भी आपके साथ साथ ले रहे हैं, इंस्टा में आपका देख रहा हूँ, सवाल अगर आ जाते हैं मेरे पास तो हम उसको भी साथ साथ एंटरटेन करते हैं।

0: السلام علیکم کالر. ہیلو ہیلو ہیلو السلام علیکم.
1: ہیلو
0: جی السلام علیکم جی. اتنا ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس لڑکی. السلام علیکم کالر. ہیلو نیکسٹ کالر. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو السلام علیکم کالر. ہیلو ون مور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
2: جی جی الحمدللہ جناب, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک
0: الحمدللہ, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جناب. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے ذرا نام بتائیے؟
2: میں امجد بول رہا ہوں میرپور سے.
0: امجد میرپور صاحب, کیا حال ہے امجد صاحب؟ میرپور کے حالات کیسے ہیں یار, پہلے تو یہ بتائیے ذرا.
2: میرپور میں تو ٹھیک ہے, وہ ہے نا رابلہ کوٹ اور کوٹی اور آبادی کے حالات تھوڑے خراب ہیں. میرپور میں تو امن شانتی ہے, سب ٹھیک ہے.
0: چلیں یار, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اللہ کا بڑا احسان ہے.
2: آمین. غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا
0: جو تمام عمر قیامت کا انتظار کیا.
2: تو
0: کیا ہوا؟
2: میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ میں بہت کم ریڈیو ٹیون کرتا ہوں, لیکن جب کرتا ہوں تو پھر آپ کو سرچ کرتا رہتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ آپ کب آئیں گے, اس وقت آئیں گے. کل میں نے آپ کو سن لیا, دل کیا یار میں نہ سنتا تو بہتر تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکا کہ میں آپ کو نہ سنتا, اور یہ بھی نہیں ہو سکا کہ میں آپ کو بھول جاتا. کل آپ نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو مجھے سخت نیند آئی ہوئی تھی, لیکن میں جاگتا رہا جاگتا رہا. تھوڑی تھوڑی ہلکی سی بوندا باندی ہو گئی, باہر میں باہر نکل کے بیٹھا رہا.
0: اچھا نہیں تو مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ کو میرا آنا خوش آئین لگا یا نہ آنا؟ مطلب میں چھٹی تو نہیں کی, میں تو آیا ہوں.
2: آپ آئے نا, اسی لیے مجھے جاگنا پڑا.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا واہ,
2: میں آپ کا انتظار کر رہا تھا.
0: اچھا اچھا اچھا, چلیں سر کوئی مسئلہ نہیں, میں اب معذرت ہی کرتا ہوں پھر آپ کو اگر میرے لیے جاگنا پڑا. کہندا ہے سانو نہر والے پول تے بلا کے تے خرے مائی کتے رہ گیا ہے.
2: نہیں آپ معذرت کس کس سے معذرت کرو گے آپ؟
0: ہاں بات یہ بھی ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے لوگ اتنے جاگنے والے ہیں کسی, یہ بات آپ باتیں آپ بڑی اچھی کرتے ہیں ماشاء اللہ.
2: کس کس سے معذرت کرو گے آپ اور کس کس کے دل سے نکلو گے آپ؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اچھا چلیں, میرے خیال میں کال بھی تھوڑی لمبی ہو جائے گی.
0: شکر ہے خیال
2: آیا. یہ ہے کہ آپ نے سوال کا کہا.
0: ہاں سوال سوال کا کہا میں نے.
2: مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی, میں چونکہ بالکل نقصل عقل آدمی ہوں,
0: پتا ہے مجھے,
2: اور بہت سادہ سا بندہ ہوں, پھر بھی میرے مجھے ایک تجسس ہے, وہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں.
0: جی پوچھے پوچھے پوچھے.
2: آپ ہمیشہ عشق کی بات کرتے ہیں.
0: جی عشق کی بات کرتے ہیں,
2: یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے.
0: اچھا سوال آپ کا کیا ہے میرے بھائی, سوال ہے کوئی؟
2: عاشق کون ہوتا ہے اور اس کے لیے کون سی عادت چھوڑنی پڑتی ہے تاکہ وہ جو ایک جز ہے اس کی طرف دھیان جائے, وہ عشق کی طرف بندے کا دھیان
0: جائے. یار
2: کون سی عادت ہے جو اپنانی پڑے تاکہ بندہ اس عشق کے ماحول میں رچ بس جائے.
0: اچھا اس کا مثال نا میں آپ کو تھوڑی سی گراس روٹ لیول سے مثال دے کے پھر وہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ وہ ایک چیز کیا لازمن ہونی چاہیے. اگر آپ مجھے پوچھیں نا کہ یار کیا ہونا چاہیے, تو اس کا جواب ایسے نہیں ہے کہ میں کسی ایک چیز پہ آپ کو بتا دوں گی کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے یا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے اب لاہور جانا ہے اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ گاڑی میں کیا کیا صحیح ہونا چاہیے, تو ظاہر ہے میں کہوں گا اس کی بریک بھی صحیح ہونی چاہیے, اس کا انجن بھی صحیح ہونا چاہیے, اس کا پیٹرول بھی اس میں ہونا چاہیے, پانی بھی چیک کرنا چاہیے. لیکن ان سب میں سے سب سے خاص بات ہے کہ اس گاڑی میں پیٹرول ہونا چاہیے, ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے, مطلب سب کچھ گاڑی بالکل ٹھیک ہے برانڈ نیو ہے لیکن پیٹرول نہیں ہے تو نہیں چلے گی. اسی طرح اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس راستے پہ چلنے کے لیے کیا جز لازمی ہے جو آپ کو کل کی طرف لے کے جاتا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے, لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کے اندر دنیا نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کے اندر دنیا ہے تو پھر یہ راستہ آپ کے لیے بڑا کٹھن ہو جاتا ہے. یہ مجھے یہ میرا انالیسز ہے کہ اگر آپ کے اندر دنیا ہے نا, وہ ہماری ایک کہاوت ہے کہ یا یار راندا یا گھر راندا, تو یا پھر آپ دنیا کو لے کے چل سکتے ہیں یا پھر آپ اس عشق کو لے کے چل سکتے ہیں. دس از سم تھنگ وچ آئی بلیو آن. ٹھیک ہے
2: چلیں جی,
0: बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा जी। 051-111-000-90-2540। खुशबख्त का जो सवाल है उसको तो हम डेफिनेटली प्रोग्राम में आगे चल के एंटरटेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे अलावा भी अगर मुझे इंस्टा पे या कॉल पे कोई सवाल आता है तो डेफिनेटली आई विल हैंडल देम। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम, जो कौन बात कर रही है? अच्छा जरा ऊंचा बात करें, अगर आप डर के बात कर रही हैं, छुप के बात कर रही हैं तो फिर रहने दें, अगर आप प्रॉपरली बात कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ तो फिर करो। हेलो, सवाल पूछें, पूछें जी, शुक्र है कोई सवाल पूछना लग गया है जी। सॉरी, ऑफ ईयर कॉल नहीं ले सकता जी, माजरत, बहुत माजरत। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी जी,
1: जो भी हो गया मुझे माफ कर दिया। मैं अब आप बोलो मैं माफी मांग लू, पंजाबी में माफी मांग लू, आप तो उर्दू में माफी मांग लू यार, बात तो करो।
0: जी जी सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। आपने अब असल में मैंने दो दफा कॉल डिसकनेक्ट की, चौथी दफा आपने उठते ही अल्लाह का वास्ता दिया तो मैं रुक गया, लेकिन आप देखें
1: मैं तो करता रहूंगा, आपको बोलो फिर मैं आपको दूंगा। मैं
0: अरे नहीं नहीं
1: एक चीज मैं आपको सॉरी कर रहा हूँ, सॉरी या तो मान लो या मुझे बोल दो कि आइंदा मुझे आप अपने प्रोग्राम में कभी कॉल नहीं करना, मैं कभी कॉल नहीं करूंगा आपको प्रोग्राम में, बोलो।
0: आपको अपनी गलती का एहसास है? लंबी चौड़ी बहस में ना जाइएगा, बस हाँ या ना में जवाब दें। आपको अपनी गलती का एहसास है?
1: चलो हाँ, तो हाँ है मगर कौन नहीं काटिएगा। चलो ठीक है, आइंदा तो मैं फोन करूँ तो आप उनसे सलाम दो रखेंगे, बात करेंगे, या आइंदा फोन ना करूँगा।
0: सर मुझे सिर्फ ये बताएं आपको अपनी गलती का एहसास है?
1: यार जाने एहसास हुआ जब तो मैं आपको फोन कर,
0: बस बात खत्म, बस बस बस बस बस बस बस बस फिर बात सुन लेना, आप बात सुन ले बस, फिर बात खत्म। कल का जो दिन था वो हमने अपने सिस्टम से निकाल दिया, मैंने अपने दिल से अपने दिमाग से निकाल दिया, आपने वास्ता हुसैन का दिया, हुसैन के वास्ते के लिए तो हम अपनी पगड़ी उतार के रख दें तो पगड़ी पे एक छोटा सा एक
1: चैन भी। अच्छा
0: अच्छा अच्छा अब देखिए आप एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे तो बात गलत हो जाएगी, बस आपने बात कर दी बात खत्म होगी ना, अब आप एक्सप्लेनेशन पे जाओगे तो फिर बात गलत होगी। सुनाए सेहत तबीयत कैसी ये बताएं, छोड़े बाकी बातें। यार कोई कलाम सुनाए आप हमें, आप हमें कोई कलाम सुनाए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई कलाम सुनाए यार, कोई कलाम सुनाए, आप आए हैं कोई कलाम सुनाए आज।
3: कलंदर मेरे वमशाल कलंदर, सैनी लाल कलंदर, अली अली अली दम अली अली, अली अली अली दम अली अली, तेरा मुर्शद करम वाला मुश्किल कुशा सदावे, ओदी हर मुश्किल हर होवे जेड़ा वास तपावे, टुट जावन जंजीर जदों भी ना मोला दा आवे, लाल कलंदर नबीदियाल कलंदर मेरे वमसाल कलंदर,
0: लाल कलंदर। क्या बात है क्या बात है क्या बात है जनाब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे अंसारी साहब, और बहुत खुश रखे, खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है। ना ना ना कर दिया सर, कर दिया कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मैंने दो दफा इनकी कॉल दानिस्ता तौर पर काटी, मैं नहीं चाहता था ये प्रोग्राम का हिस्सा बने, लेकिन तीसरी कॉल पे इन्होंने पहला जुमला जो कहा कि अल्लाह का वास्ता है तो मैं उस चीज पर रुका। सिर्फ एक सवाल कि गलती का एहसास हुआ, बतौर वो कह रहे हैं हुआ तो जाहिर अब दिलों का हाल तो अल्लाह जानता। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि इसके बाद मैं फिर हुसैन का वास्ता दूंगा। तो ये वो शख्सियात हैं कि जिनके नाम के ऊपर हमारी अनाए नहीं, हमारी जवानियां नहीं, हमारी जिंदगियां नहीं, हमारा सब कुछ कुर्बान है। और इन्हीं शख्सियात ने हमें अपने जो सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका तहफ़ करना भी सिखाया है। ये भी ज़रूर याद रखिएगा, ये एक केस स्टडी भी था आप सब बच्चों के लिए, जो आप जिन लोगों ने कल प्रोग्राम सुना और अभी सुना, ये आप लोगों के लिए केस स्टडी है कि अगर आप अपनी सेल्फ इस्टीम के लिए थोड़ा सा स्टैंड लेते हैं अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में, तो अगले को एहसास होता है। और ये अच्छी चीज़ है उनके एंड पे भी कि उनको भी एहसास हुआ, ये भी अच्छी चीज़ है, ये भी एक अच्छे इंसान होने की निशानी है। जैसे मैंने कहा कि बाहर तो कह रहे हैं, बाकी अब दिल में क्या है वो तो अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन ये भी एक अच्छे इंसान होने की निशानी है कि अगर किसी को एहसास हो जाए। और जिस तरह उन्होंने कहा, तो मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, इस दुनिया में और आखिरत में सर आपके लिए अब कोई किसी किस्म की कदूरत नहीं है। ठीक है, कदूरत तो खैर पहले भी ना होती, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं दोबारा आपको कभी अपने प्रोग्राम का हिस्सा ना बनाता, लेकिन आपके एहसास हो जाने के बाद यकीनी तौर पर आप मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कल के दिन से पहले थे। सो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बाकी ये ज़रूर याद रखना, जितने यंगस्टर्स सुन रहे हो, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हो, इसी हुसैन ने, जिस हुसैन अलैहिस्सलाम को हम रोएंगे भी अभी मुहर्रम में, पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, जानने की कोशिश करेंगे, और आई गेस के मुहर्रम से पहले ये शायद आज आखिरी शो हो, अगर मैं कल नहीं आता हूँ, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि 101 इंटरनेशनल तो मैं कल नहीं करूँगा क्योंकि ज़नफर भाई वापस आ गए हैं। 10 से 12 मेरा कल शेड्यूल प्रोग्राम है। अमूमी तौर पर चूँकि सैटरडेज़ में मैं कहीं ना कहीं पर स्टक होता हूँ किसी इवेंट में या किसी जगह पर, तो अगर उस टाइम ब्रैकेट में मैं फ्री नहीं होता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ, तो आज का जो प्रोग्राम मैं अभी प्रोग्राम कर रहा हूँ ये मुहर्रम से पहले आखिरी प्रोग्राम होगा। और मुहर्रम में हमारी एक जो रूटीन रही है वो ये रही है कि यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक प्रोग्राम्स नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता कि इस साल क्या मामला है, लेकिन यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक FM 101 इस्लामाबाद के स्टेशन से प्रोग्राम नहीं होते हैं। सो उस चीज़ को देखा जाए तो फिर ये मेरा आज आखिरी प्रोग्राम होगा मुहर्रम से पहले, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 15 या 16 तारीख को, जो 15 या 16 जून जो है, उसमें रुयत हलाल कमेटी ने चांद देखना, ये फैसला करना है कि मुहर्रम अलहराम आयदर 16 को शुरू हो रहा है या 17 को शुरू हो रहा है, और फिर उस हिसाब से शूरा का भी फैसला होना है। सो खैर, आपसे जो अर्ज़ है वो ये करनी है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझेंगे भी, उन पर गिरिया भी करेंगे, उनको उनका मिशन भी समझेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी सेल्फ इस्टीम के लिए कतअन सौदा नहीं किया, स्टैंड लिया। आपको क्या लगता है कि वहाँ से कोई मुज़ाकरात की दावत नहीं आई होगी या अपॉर्चुनिटी नहीं आई होगी? चाहे फिर हज़रत अब्बास का जाना हो, चाहे फिर जनाब कासिम का मैदान में जाना हो, जनाब अली अकबर का जाना हो, जनाब अली असगर का जाना हो, इवन यहाँ तक भी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब कहा गया कि आप बैत करें, मतलब दूसरी जानिब से, तो सिर्फ ये नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं नहीं करता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आप जवाब देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो जो मुझ जैसा होगा वो तुझ जैसे की बैत नहीं करेगा। तो रहती क़यामत तक, रहती दुनिया तक, जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक जो बार है वो सेट कर गए हैं आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। दैट वाज अ केस स्टडी। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस।

0: ख्याल कीजिए कि चेक करें कि लोग किस मकाम पर मौजूद हैं। मैंने कहा कि कोई क्वेश्चन है तो करें, तो बाज़िगा अब्बास हैं, कह रही हैं आप मेरे से शादी करेंगे। जी नहीं जी, बाखुदा ये हाल है लोगों का। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो मैडम जी, देखें कैसी बातें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम, किधर आईसीयू से फ़ोन किया? हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? बहन आपको आवाज़ नहीं आ रही है? ठीक हूँ तो फिर आप तीसरी दफ़ा क्यों पूछ रही हैं, जबकि मुझे अंदाज़ा है कि आपको आवाज़ आ रही है। आपको आवाज़ आ रही है तो गुफ्तगू करें, स्टाइल क्यों मार रही हैं? अच्छा, अब आइए ना। हाँ जी, फिर बताइए क्या कहना चाहेंगी।
1: अच्छा प्रोग्राम आपका।
0: आप प्रोग्राम सुन रही थी? कॉल कटेगी अभी। हेलो, हेलो जी, ये तो गाना लगा दिया मैम ने। हेलो, ये हाल है।

0: सर आप कैसे हैं?
1: शुक्र अल्लाह, तारिक मोहब्बत बात कर रहा हूँ कुहाट से।
0: क्या हाल है तारिक मोहब्बत साहब?
1: शुक्र अल्लाह, ये स्टाइल आप भी मारते हो। चलो लोग मारते हैं लेकिन आप भी मारते हो प्यार।
0: मुझे
1: मतलब
0: तो
1: बात किया कर
0: सर मुझे
1: किया
0: तो
1: करो,
0: मुझे
1: तो
0: तो
1: बहुत अच्छी
0: मुझे
1: बात
0: तो
1: है।
0: मुझे तो पैसे मिलते हैं ना सर, इसलिए मैं मारता हूँ। आप लोगों को क्या मिलता है सर?
1: पैसे की इज्जत नहीं होती,
0: आप
1: जितना
0: यकीन
1: पैसे
0: करें
1: की इज्जत
0: सर,
1: होती
0: आप
1: है।
0: यकीन करें, आपकी आवाज ऐसी आ रही है इस टाइम पे जैसे लोटे के दरमियान में मेंढक फंसा होता है, घर घर करके। तो हम, मैं अजियत बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ, आपकी इज्जत के लिए कर रहा हूँ, वरना किसके लिए कर रहा हूँ?
1: सुनाओ मेरी बात,
0: वरना
1: आपकी बात
0: इज्जत,
1: ठीक है,
0: मैं
1: आपको
0: यही तो कह
1: सुनना
0: रहा हूँ कि
1: चाहिए,
0: आप, मैं
1: आपकी
0: यही तो
1: बात
0: कह रहा हूँ कि
1: है।
0: सर आप बात करें, आप बात ही
1: तो
0: नहीं कर रहे हैं सर। सर आप बात कर ही नहीं रहे, आप बात करें तो सही ना सर, आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं सर? आप बात करें ना
1: मैं कर रहा
0: सर,
1: हूँ,
0: आप बात ही नहीं कर रहे हैं आगे से। मैं
1: मैं
0: आपसे कह रहा हूँ
1: इज्जत
0: बात करें, आप
1: करती
0: बात
1: है।
0: कर ही नहीं रहे हैं सर। आप बात का, आप अपनी बात करें, आप किसी और की बात क्यों कर रहे हैं? आप अपनी आके बात करें। मैंने आपको सर कह के मुखातिब किया, आपको सर राजी नहीं आया सर।
1: मैं भी आपको सर
0: सर
1: कह
0: मैंने
1: रहा
0: आपको
1: था,
0: सर
1: आपने
0: कहा,
1: मुझे
0: आपने,
1: जरा मैं
0: आप
1: जवाब
0: मुझे
1: दिया
0: आगे से अगली
1: तो
0: कहानी देखें, आपने गलत बात स्टार्ट की ना सर। मैंने आपको सर कहा, आपने गलत बात स्टार्ट कर दी आगे से।
1: मैंने यहाँ से
0: नहीं
1: आपका
0: देखें, अब
1: आदमी
0: आप
1: किया
0: यहां
1: है।
0: से, यहां से अगर आप देखें, आप मेरे लिए कॉलर हैं, भाई से तो एहतराम है। अगर आप यहां से दोबारा गलत बात करेंगे तो मैं उसका जवाब गलत से दूंगा। अगर आप सही बात करेंगे, अच्छी
1: मैं
0: बात
1: भी
0: करेंगे,
1: आपको सुना
0: तो आप
1: रहा
0: मेरे
1: हूँ,
0: लिए
1: आप
0: काबिले
1: जवाब
0: एहतराम है, हम
1: दीजिए,
0: अच्छी बात
1: आपकी
0: करेंगे।
1: इज्जत जो है ना, इज्जत
0: सर मैं आपसे
1: आपकी
0: कह रहा
1: है।
0: हूं कि अगर मेरे इस जुमले के बाद जो मैं अब आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप काबिले एहतराम है, आप बात करेंगे तो मैं आपसे इज्जत से बात करूंगा। अगर आप कुछ यहां पे उस्ताद बनने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं जवाब उसका उसमें दूंगा, फिर मैं गजल आगे बढ़ाऊंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि
1: आपके ले
0: आप,
1: जाना, जो आप
0: सर
1: बातें
0: मैं
1: करते
0: आपसे
1: हैं ना,
0: अर्ज
1: मेरे
0: कर रहा हूं
1: साथ
0: कि
1: ही बातें
0: अगर
1: करते अच्छी करते हैं।
0: अगर आप कोई ऐसी सहरंगेज हासिल गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आप बात कीजिए, हम आपको सुनेंगे। लेकिन अगर आप
1: मैं
0: यहां
1: सुन
0: पर
1: रहा हूं,
0: आकर
1: मेरी
0: अपनी
1: बातें सुन तो
0: एक
1: सही ना,
0: तमीज
1: आपसे
0: की
1: इज्जत
0: किताब,
1: से आगे भी तो सुनना।
0: हाँ जी, अपनी, अगर आप एक तमीज की किताब खोलना यहां पर चाहेंगे तो वो हम नहीं खोलने देंगे। अगर कोई अच्छी गुफ्तगू है तो आप कीजिए, प्लीज कीजिए सर।
1: वो अच्छी तरह है ना, अच्छी
0: जी जी प्लीज
1: तरह
0: कीजिए, प्लीज कीजिए।
1: ना,
0: जी जी
1: आप अपनी सुना रहे, हमारी भी तो सुन
0: सर,
1: ले।
0: सुनाइए सुनाइए प्लीज, बिस्मिल्लाह।
1: आप जो बातें करते हैं इस्लामी, बहुत जबरदस्त करते हैं,
0: ठीक है।
1: लेकिन इस्लाम के साथ
0: अच्छा
1: साथ
0: सर,
1: इस्लामी
0: लेकिन के
1: भी
0: बाद फिर
1: तो
0: बात वही आ गई। अगर आप देखें, इससे हट के कोई बात करेंगे तो आप मेरे लिए काबिले एहतराम है, हम आपको सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। लेकिन अगर आप यहां पे आके फिर वही एक गलत बात करेंगे तो उसकी इजाजत हम नहीं देंगे, फिर वो तो गलत बात हो
1: ना
0: जाएगी
1: ना,
0: सर।
1: मैं आपको गलत नहीं कह रहा,
0: मैं
1: मैं आपको
0: सर,
1: समझा रहा
0: मैं
1: हूँ कि
0: कह रहा
1: आप
0: हूं कि
1: जो
0: आप ना सही
1: गलत
0: कहें,
1: बोल
0: आप
1: रहे
0: ना
1: हैं
0: गलत कहें,
1: मैं
0: मुझे सर
1: आपको
0: एक बात
1: समझा
0: बताएं,
1: रहा
0: आप मुझे एक
1: हूँ।
0: बात बताएं सर, आप मुझे एक बात बताएं, आपकी उम्र क्या है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आपकी उम्र क्या है सर?
1: मेरी उम्र है 37 साल, 38 साल उम्र है मेरी।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या करते हैं सर आप?
1: मैं बाजार की तरह छोटा मोटा जॉब करता हूँ,
0: अच्छा जबरदस्त, क्या
1: जिस तरह
0: नौकरी
1: आप
0: करते हैं?
1: पैसे के लिए कर रहे हैं तो उस तरह मैं भी टमाटरों की रेड़ी लगाता हूँ।
0: नहीं लेकिन आप तो अमीर आदमी है ना सर, आप तो अमीर आदमी,
1: नहीं
0: हम
1: नहीं
0: तो, हम
1: अमीर
0: तो
1: वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं।
0: ये इसमें आपके देखे ना, अखलाक अच्छे हैं आपके, तो अखलाक भी अच्छे हैं और पैसे भी अच्छे हैं, इसका मतलब आप तो फिर डबल अमीर हो गए ना सर।
1: आपने बात की है कि मैं पैसों की
0: अच्छा
1: बात करता
0: मुझे
1: हूँ, पैसे
0: मुझे
1: कुछ
0: मुझे
1: नहीं है
0: मुझे
1: बात।
0: ये बताएं, मुझे ये बताएं, ये जो आप तंबाकू सेल करते हैं, ये मतलब कोई खुला तंबाकू सेल करते हैं, किस तरह? थोड़ा सा बताएं, थोड़ा हमें इस कारोबार के बारे में समझाएं, छोड़ी बाकी बातें, हमें पैसा
1: मैं
0: बनाना
1: टमाटरों
0: सिखाएं।
1: की रीड लगाता हूँ, टमाटरों की।
0: अच्छा टमाटरों, सॉरी यार सॉरी, मुझे लगा आप कह रही है तंबाकू की रेड़ी, आई एम सॉरी। अच्छा टमाटरों की रेड़ी लगा,
1: आपके इधर ईएनटी स्पेशलिस्ट है, अपने काम शांति चेक करा।
0: नहीं नहीं नहीं टमाटरों की रेड़ी, टमाटरों की रेड़ी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा अंदाजा हो रहा है कि आपका इखलाक कितना अच्छा है? अभी थोड़ी देर पहले आप इखलाक के ऊपर दर्श दे रहे थे, बहुत अंदाजा हो रहा है,
1: कह रहे ना, जो आपके
0: बहुत।
1: अल्फाज आप कह रहे जी
0: सर
1: टमाटर,
0: मैंने मैंने
1: आपके
0: आपसे यही
1: अल्फाज जो
0: कहा,
1: आपने सुना, सिर्फ
0: मैंने
1: सुने ना आप।
0: मैंने आपसे यही कहा कि माजरत के साथ, मुझे ये लगा कि तंबाकू की रेड़ी, मैं आगे मैंने कहा माजरत के साथ, देखें जुमला मैंने ऐड किया इसमें,
1: अभी
0: लेकिन आप
1: तंबाकू
0: अभी
1: आपने डाला है अंदर मुंह में,
0: अभी आप थोड़ी देर पहले आप देखें अखलाक का दर्स दे रहे थे सर, अभी देखें
1: मैं
0: आप
1: आपको आप गलत कह रहे हैं। देखो आप खुद ही
0: सर मैंने आपसे,
1: सबसे
0: अच्छा
1: दिमाग
0: देखें
1: वाला
0: आप
1: आदमी
0: छोड़े, आप
1: सोचा
0: टमाटरों की रेड़ी
1: कि
0: लगाते हैं यार, मेरी भी सुन ले रहा,
1: मारते
0: आप टमाटरों की रेड़ी लगाते हैं
1: हैं यार
0: सर,
1: अपने
0: आप
1: आप को
0: टमाटरों की
1: मारते
0: रेड़ी लगाते हैं,
1: हैं।
0: आप टमाटरों की रेड़ी लगाते हैं,
1: जी
0: बहुत अच्छी बात करते हैं। अच्छा मुझे अब ये बताएं सर कि आप मतलब ये डेली बेसिस पे उठाते हैं और उस पर थोड़ा मार्जिन रख के बेचते हैं, या थोड़ा हमें बताएं इस कारोबार के बारे में, हमें बताएं, छोड़े सारी बातें।
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी कमाता हूँ उस पाक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
0: हाँ
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा, तो यानी कि अगर किसी नौजवान ने ये काम शुरू करना हो तो अच्छा काम है सर?
1: क्यों नहीं अच्छा काम, सबसे
0: कितने
1: बड़ी बात है आपका अखलाक, आप गा का है,
0: कितने
1: आप
0: कितने
1: वैसे
0: पैसों,
1: अखलाक से पेश आए
0: कितने
1: ना।
0: पैसों से सर ये शुरू किया जा सकता?
1: मैंने कहा जो गाहक आता है ना बंदर, गाहक आता है
0: वो
1: किसी
0: ठीक
1: बात
0: है,
1: की,
0: लेकिन
1: हेलो
0: एक,
1: टमाटर किस तरह है।
0: वो सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कितने पैसों से वैसे शुरू किया जा सकता है कारोबार?
1: आपके पास 10,000 हो, 5,000 हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है।
0: मतलब अगर फर्ज करें आप 10,000 रुपये का टमाटर लेते हैं तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह रात में खत्म करके जाते हैं तो 10,000 रुपये पे कितना बंदा प्रॉफिट कमा सकता है डेली का? मैं वो जरा,
1: शुक्र

0: 4,000, यानी कि 4 मतलब 40, 80, 1,00,000 भी, यानी कि महीने का कोई 1,25,00,000 रुपया बंदा प्रॉफिट कमा सकता है।
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
0: बड़ा अच्छा काम है यार ये तो। और ये आप एक रेडी का बता रहे हैं, ऐसा ही है?
1: लेकिन देखो ईशान भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं।
0: और यार देखें, फिर आप गलत, फिर आप देखें, नहीं नहीं ये ऐसे हम नहीं खेलेंगे, ऐसे तो हम खेलेंगे ही नहीं ना सर। उसकी वजह ये है कि ये जो आप कर रहे हैं, ये तो हम तब किया करते थे सर जब वी यूज टू प्ले द फिनिशिंग लाइन व्हेन इवन द फिनिशिंग लाइन वॉज नथिंग एट ऑल। तो हम तो ये तब किया करते थे जब ये होता भी नहीं था, जब ये रेडियो पर ना इस तरह की गुफ्तगू करना माजला गुनाह समझा जाता था ना, हम तो तब इस तरह की गुफ्तगू किया करते थे जो आप कर रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं। मैंने आपको बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, हालांकि आप मेरे हम उम्र हैं, मैंने आपसे उम्र इसलिए पूछी थी कि अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं तो फिर मैं खामोश हो जाऊंगा, लेकिन चूंकि आप तकरीबन मेरे हम उम्र हैं, मैंने आपको एक दफा, दो दफा, तीन दफा रिबटल दिया। और मैं ये वंस फॉर ऑल ये सबके लिए कह रहा हूं, और इसमें कोई दूसरी राय है नहीं, मैं 10 दफा कॉल लूंगा। आप ये सोचिएगा भी मत कि ज़ीशान नासिर वो बंदा है कि उसको एक दो कॉल ऐसी आएंगी तो फिर वो कहेगा चलो गाने प्ले करना शुरू कर देते हैं या वो बातें करनी शुरू कर दे। हालांकि मैं आपको मजे की बात बताऊं, नॉर्मली अगर आप मेरा शो सुनते हैं तो नॉर्मली मैं कॉल्स पिक करता ही नहीं हूं अपने प्रोग्राम में, ठीक है? उसकी वजह ये होती है कि मेरे पास खुद बहुत सारी गुफ्तगू होती है जो मैंने करनी होती है, फिर आप लोगों के मैसेजेस लेने होते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मैं 5 कॉल्स नहीं, मैं 10 कॉल्स नहीं, मैं फिर 15 कॉल्स लेता हूं, मैं 20 कॉल्स लेता हूं। तो ये तो आप कतई सोचिएगा भी नहीं कि कोई शख्स आए और इस तरह आके प्रोग्राम को हाईजैक कर जाए। जब तक पैनल सीट के ऊपर मैं हूं, अपने प्रोग्राम की जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं किसी को अपना प्रोग्राम हाईजैक करने दे ही नहीं सकता, कोई सोचे बिना 1% के लिए। सो मैंने एक बार रिबर्टल दिया, दो दफा रिबर्टल दिया, तीन दफा दिया। हम आपसे बिजनेस के ऊपर बात करें, आप बिजनेस के ऊपर हमसे बात करें। आप अगर यहाँ पर आके स्कूल खोलेंगे या हमें तमीज सिखाएंगे या हमें जो है वो यहाँ पे ये अपने आप को पेश करने की कोशिश करेंगे कि आप कोई बहुत बड़े यहाँ पे तमीज के ठेकेदार हैं, तो सर ये जगह फिर आपके लिए मौजूद नहीं है। फिर आप ऐसा किया करें, किसी और प्रोग्राम में कॉल किया करें जिसमें फिर आपकी ये कॉलेज हो रही हैं वो सुने। हमारे पास ना इतना टाइम है ना हमें इसकी जरूरत है। और याद रखिएगा कि एक अक्लमंद बंदे की निशानी भी सर ये होती है कि वो एडवाइस सिर्फ वहां देता है जहां पे एडवाइस उससे मांगी जाए, ठीक है? अभी वैसे हमने आपके इखलाक की थोड़ी झलक देखी भी, जितनी आप इखलाक का दर्स दे रहे थे, वो तो मेरा आज थोड़ा सा मूड ऐसा नहीं है कि मैं आपको उस तरह से जवाब दूं, अदरवाइज हमने काफी इखलाक आपका देखा। इसलिए चूंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं बार बार आपको टाइम देके अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अपना भी और जो सुनने वाले हैं उनका भी। सो हम कॉल्स लेंगे, मजीद कॉल्स लेंगे, इस तरह की लगातार 10 कॉल्स भी आती हैं तो मैं इसी तरह ही डील करूंगा। हमें आप तमीज ना सिखाएं, आप आए अपनी बात कीजिए। अगर हमारी तरफ से आपके साथ कोई बदतमीजी होती है तो आप कहें कि जी मैं एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं, आपने मेरे साथ गलत बात की है, मैं आपको उसकी जस्टिफिकेशन दूंगा कि भाई ये मैंने ऐसे की है या नहीं की। लेकिन अगर आप आके किसी की वकालत करेंगे तो ना हमें इसकी जरूरत है, ना हमारे पास इतना टाइम है, और ना मेरे भाई ये वो शो है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, वालेकुम सलाम जनाब, आपने दोबारा कॉल किया सर मीरपुर से। आपके पास सवाल है तो बात करेंगे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। सर आपने दोबारा कॉल किया, मीरपुर से बात कर रहे हैं आप, ऐसा ही है ना?
2: वो
0: सवाल है आपके पास।
2: मैं ये पूछना चाहता था कि मैं अगर आपसे कांटेक्ट करूं तो किस तरह से मैं वहां मिल सकता हूं?
0: सर इंस्टा पे
2: कर, इस्लामाबाद में आऊंगा मैं।
0: सर आप इंस्टा पे कांटेक्ट कर लें, या मैं नवी मुहर्रम के जुलूस में G6 में होता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ढूंढ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो हेलो जी, ओके नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। असल में मैं कॉल इसलिए नहीं लेता क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो कि बात करना चाहती हैं वो कॉल मिला लेती हैं, फिर बात नहीं होती है उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, ये इसकी प्राइम एग्जांपल है जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है, कहां से? ये अब एग्जांपल है इसकी। नहीं आप ऑन एयर, अच्छा चले मैं लेता हूँ ऑफ एयर, चले ऑफ एयर होगी, बताए। कॉल में कहना 100% ऑफ एयर है, दसो। बताए ना बीबी, बताएं अब ऑफ एयर किस तरह ऑफ एयर, हम पूरा रेडियो बंद करा दें, पूरा पाकिस्तान बंद करवा दें। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो जी हेलो, ये एग्जाम्पल है, मैं जानबूझ के नहीं काट रहा था कि आपको एग्जाम्पल दूं मैं जी। हेलो बाजी, मेरा ख्याल से बाहर जा रही हैं, कमरे से निकल के बाहर निकल के बात करना चाह रही हैं, है ना। हम वेट कर लेते हैं बाजी, बता तो दें कि वेट कर लें, वेट कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हाँ, मानते हैं कि नहीं जी। सलाम वालेकुम,
1: बात
0: आप कहें जी, हम हाजिर हैं बात सुनने के लिए। हुक्म।
1: कर
0: हाँ करें। बहन जल्दी कर लें प्लीज, थोड़ा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, जरा जल्दी कर लेना।
1: मेरे
0: आपके लिए रिश्ता है?
1: लिए
0: अच्छा, फिर
1: करना
0: आप शादी नहीं करना चाहती हैं, तो ये बात अपने पेरेंट्स को बताएं, अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो फिर भाई को बताएं, भाई नहीं है तो उसको बताएं जो आपकी शादी करवा रहा है। ना तो मैं रिश्ता आपके लिए लाया हूँ, ना मैं आपकी शादी करवा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ इसमें। अच्छा सुनाए सुनाए सुनाए, जरा जल्दी बोले ना, जल्दी बोले, टाइम कम है हमारे पास। आप एक जुमले के बाद 2 मिनट का पॉज लेती हैं तो हम क्या करें फिर, बताइए।
1: मैं
0: अच्छा
1: उसको जानती
0: अच्छा तो
1: हूँ
0: नाम भी नहीं
1: और
0: पता, जानती भी नहीं है, तो नहीं, मैं इसमें क्या करूं, मेरे से क्या सवाल है, मेरे से क्या चाह रही है, मुझे वो बताएं। बहन मेरे से क्या चाह रही है, मुझे बताएं, मुझे मारे मारे मुझे।
1: उसका
0: जी
1: नाम पता है। वो
0: वो जवाब मांग रहे हैं, तो आप उनको कह दें कि भाई मुझे तस्वीर दिखाएं लड़के की। हेलो जी, आप किसी और को पसंद करती हैं? अच्छा, तो इस पूरी सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं, मुझे ये बताएं। हेलो
1: अपने
0: आप रात के 1:06 पे एक रेडियो चैनल पे कॉल कर सकती हैं, लेकिन अपने घर वालों से बात नहीं कर सकती। अच्छा, सख्त है कि उसने रात 1:15 आपको अलाउ किया हुआ है कि आप रेडियो चैनल पे कॉल करके पूरे पाकिस्तान को बताएं कि आपको मोहब्बत हो गई, और आप अपने भाई को नहीं बता सकती।
1: दोस्त
0: अच्छा, घर पे नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही हैं आप। तुम भाई है आपका, कोई ऐसा मसला नहीं, भाई को कहें कि जा तुम शादी करा रहे हो ठीक है, लेकिन मुझे कम से कम बंदा तो दिखा दो, तस्वीर दिखा दो, उसका नाम बता दो, इसमें कोई ऐसी गलत बात तो नहीं है। ठीक है, हेलो। हाँ चल, ये हाल है, बंदा जाए तो जाए किधर, दुनिया चांद पर पहुंच गई है, पाकिस्तान अब मैं क्या करूं। कुछ कॉल और लेते हैं फिर, जो 2-3 सवाल मेरे पास हैं, एक तूबा का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है हमारे पास कुछ बात का। जी
2: भाई,
0: सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: ईशान भाई क्या है? ठीक है
0: करम जी, करम, शुक्र अल्लाह का
2: जी। शफीक बोल रहा हूँ जी, राहुल
0: जी। शफीक साहब,
2: अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अच्छा सर, एक तो ये जो दो तीन बंदे हमारे कॉल पे आते हैं, एक तो आपकी बात सुनते नहीं है, बस वो दरा दर आपकी चलाई जाते हैं। जितने जो जो भी ये दो तीन बंदे, आपको भी बताओ
0: जी।
2: अगर आपकी थोड़ी बात सुन लिया करें ना, कि आप उनको जवाब किस तरह का देना चाह रहे हैं या उस बात का मतलब क्या है जो आप उनको समझाना चाह रहे हैं,
0: ऐसे ही
2: तो खुदा राम सुनने के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी।
0: ऐसे ही है शफी साहब। मैं चले ना, अब आप माशाल्लाह आपने एक अच्छी बात की, मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है किसी को और को भी अफाका होगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने कहा कि आप भी स्टाइल मार देते, मैंने आगे से जवाब दिया कि मुझे तो पैसे मिलते हैं, तो इसका मकसद ये था कि जैसे मैं आकर शुरू करता हूँ प्रोग्राम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक ठाक, कुछ बात, उम्मीद। अब मैं आम जिंदगी में तो ऐसे नहीं बोलता, ऐसा नहीं है ना कि मतलब मैं आम जिंदगी में कभी अगर आप शफी साहब मुझे मिले तो मैं कहें अस्सलाम वालेकुम शफी साहब, क्या हाल है, ठीक है, फिर मैं आम जिंदगी में आपको ऐसे ही मिलूंगा जैसे एक आम आदमी मिलता है कि अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं शफी साहब, आप ठीक हैं। तो इस मैं जिस सीट पर हूं वहां पर मुझे लफ्जों को बनाना है, उतार चढ़ाव लाना है, क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम बनाना है। जो कॉलर है उसके लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है, उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं इस चीज के, मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे ये उतार चढ़ाव लाना है। तो मेरा जो गुफ्तगू थी या जो मेरे लफ्ज थे उनका मकसद ये था, लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां पर सुनने को लोग तैयार नहीं है ना। अच्छा, एक ना बड़ी जबरदस्त चीज मैंने कहीं पढ़ी थी कि अल्लाह पाक ने जुबान एक दी है, कान दो दिए हैं इसके लिए, क्योंकि बोलना कम है और सुनना ज्यादा है, लेकिन हमारे हमारा मसला है कि हम सुनते कम है बोलते ज्यादा
1: अच्छा सर आपके जितने भी प्रोग्राम है मैंने काफी से प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हुए थे, एक रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए,
0: कौन सा?
1: अगर आप वो मुझे बता दें अगर वो मिल सकती है वो बड़ी मेहरबानी होगी।
0: जी जी कौन सी बताइए
1: सर? वो एक जुगली दास की आपने एक स्टोरी सुनाई थी।
0: जी जी सर वो है, वो क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग, वो यूट्यूब पे भी पड़ी है, बल्कि आज मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाई, उसमें वो किसी ने शायरी की थी। तनवीर तानी हमारा एक लड़का है और मोहसिन एक लड़का है, ये रिकॉर्डिंग फटाफट शेयर कर देते हैं ग्रुप में, तो अगर आप इंस्टा के ग्रुप में है तो शामिल हो जाए, अगर नहीं है तो भी शामिल हो जाए, कोशिश करें किसी तरीके से शामिल हो जाए।
1: चलो ठीक है मैं कोशिश करूंगा। तो मैं मेरा भी एक छोटा सा सवाल था।
0: जी जी पूछिए।
1: मैं आपसे बस एक मशवरा लेना चाहूंगा।
0: जी जी जी पूछे।
1: मैं बात यह है कि मैं एक बंदे के साथ तकरीबन कोई एक जगह 3 साल हम बैठे रहे हैं।
0: अच्छा
1: ठीक है। तो हमारा आपस में काफी, वो बंदा उकाड़ी का रहने वाला है, मैं यहाँ पिटी का रहने वाला हूँ।
0: अच्छा।
1: तो जहाँ पे हमने वो किसी और जगह पे ड्यूटी करता था, मैं भी उसी जगह पे ड्यूटी करता था, लेकिन हम शाम को वो एक जगह पे इकट्ठे होते थे।
0: समझ गए।
1: तो काफी हमारा आपस में ताल्लुक बसा बन गया।
0: ठीक है।
1: वो जब उकाड़े में गया है वापस, तो उसने मुझे कॉल किया यार कि श्री किस तरह एक जॉब आई है, अगर आप यहाँ आना चाहें। मैंने बोला यार ठीक है, मैंने बोला तनख्वाह कितनी है, कहता 40,000 के लगभग तनख्वाह होगी। अच्छा उसने जितनी भी गुफ्तगू की है ना, तो उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये बंदा थोड़ा सा मुझे किसी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, ये पैसे बटोर रहे हैं जो कोशिश कर रहा है। और वाकई उसने फिर वो किया। मैं मसला ये है मेरा कि बहुत जल्दी एतमाद कर जाता हूँ जिनके साथ उसका बैठा हूँ ना, बहुत जल्दी जो है एतमाद कर जाता।
0: बड़ी खतरनाक आदत है।
1: जी जी मैंने एतमाद करके उसने मुझे बोला यहाँ के आप पैसा करेंगे 15,000 रुपया भेजे, ठीक है वो पैसे आपके फाइल बनेगी जमा होंगे, तो इतने दिन के बाद आपको जो है ना फिर आ जाना। मैं तैयारी करके जब मैंने उसे बोला कि ठीक है यार मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ आपके पास, उन्होंने बोला नहीं तुम पैसे भेज दो,
0: तू आप आ या ना आप पैसे भेज दे बस।
1: पैसे भेज दिए मैंने।
0: अच्छा
1: आप वो कह रहे हैं कि यार के वो जॉब नहीं दिखी है, ये हो गया बस बहाने सरकार के, उन्होंने काफी मुझे जो है ना डिस्टर्ब किया है।
0: ये तो बड़ी गलत बात की।
1: बात ये करने जा रहा हूँ कि मैं अब उस बंदे से पैसे वसूल करूँ और किस तरह करूँ, बस ये आप मुझे।
0: आपने उसको कहा है कि मेरे पैसे वापस करो?
1: जी जी।
0: तो क्या कह रहे हैं आगे सर?
1: वो आपको कह रहे हैं कि वो पहले मुख्तलिफ वो बातें करता रहा है, ठीक है, तो अभी बस उसे ये बोला है या आप यहाँ आ जाए, ठीक है आपको नौकरी मिल जाएगी, पैसे आपको नहीं मिलते। मैंने बोला जब पहले आपने खुद कह दिया कि जगह नहीं है मेरे पास, नहीं है जगह, वो जो फिल हो गई है, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा, तो आप पैसे भी आप वापस ही कर रहे, अभी आप ये कह रहे हैं कि आप वहां पे आ जाओ आप नौकरी मिल जाएगी आपको, अगर नहीं आते तो आपको पैसे नहीं मिलते।
0: तो आप वहाँ क्यों नहीं जा रहे अगर आपको वाकई नौकरी चाहिए थी और वो कह रहा है कि आज मैं दे रहा हूँ, तो फिर आप क्यों नहीं जा रहे?
1: ये टोटली फ्रॉड है ना, वो सारा मैंने मालूमात की है उसके साथ जो दूसरे बंदे थे, वो कह रहे हैं कि वो एक ग्रुप बना हुआ है कि काफी सारे बंदे उनके साथ हैं, वो सिर्फ यही लोगों को इसी तरह वो रिला कर तो उनसे पैसे जो ले लेते हैं, बाद में कहते हैं कि जगह नहीं है हमारे पास, नहीं है जगह।
0: समझ गया बिल्कुल समझ गया। ठीक हो गया सर, मैं इस पे आपको मशवरा सर ये दूंगा कि अगर तो आपको 100% कंफर्म है कि आप जो है वहां पे जाएंगे और आपके साथ फ्रॉड होगा, तो आपको ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब आपकी गुफ्तगू उससे हुई थी और कोई ऐसा क्लॉ था कि भाई मैं जॉब पे आना चाहूँ या ना चाहूँ ये मेरी मर्जी होगी, तो मेरे पैसे वापस करोगे, तो फिर तो उसको वापस करने चाहिए। लेकिन अब हो सकता है कुछ जगह ऐसी होती है ना जहां पे आप पैसे जमा करा दें, उसने फॉर एग्जाम्पल अगर ये धोखा ना हो और उसने वाकई आपकी जॉब के लिए पैसे जमा करा दिए हो, तो जाहिर है वो कैसे वहां से उसको भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं आप? तो इसमें ये या तो आप अपना कोई बहुत काबिले एतबार बंदा भेजो, जो बहुत काबिले एतबार हो उसको भेजो वहां पे, और वो कन्फर्म आपको बताए कि हाँ सर ये ऐसा है या नहीं है। अगर कोई ऐसा बंदा है तो ठीक है, अगर ऐसा बंदा नहीं है तो फिर आप जो है पैसे कितने हैं, ज्यादा पैसे हैं
1: सर? 15,000 रुपये। मेरी आपके दिसंबर में एक दफा बात हुई थी जब से मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग भी वो आवाज भी सुनाई थी कि बंदा एक अरन बजा रहा है गेट पे, तो आपने उसके बारे में थोड़ी गुफ्तगू भी की थी, याद होगा आपको? ठीक है, तो उस वक्त की बात है, ये मेरे तकरीबन दो साल हो गए हैं, ठीक है, तो अब वो बिना पैसे वापस कर रहा है। अब मैं उसे बोला हूँ मैं इधर आ जाता हूँ, तो वो अभी इस मेरे उधर आने पे भी जो है ना वो बातें ऐसी कर रहा है कि मुझे मिलना भी नहीं चाह रहा है वो।
0: चलें आप ऐसा करें ना कि आप उसको कहें कि भाई मेरे पैसे वापस करें, आप कह के ही हो सकते हैं, बिकॉज देखें दूसरा रास्ता वो पुलिस को इन्वॉल्व करना है या उसमें फिर आपके मजीद पैसे लग जाएंगे। लेकिन
1: हाँ, वो तो सीधा है नहीं है सर, वो तो जितना मैंने दिए उससे कहीं ज्यादा वो लग आगे जाएंगे, चला जाएगा।
0: आप वो इस्लामाबाद में होता है तो मुझे बताएं, हम निकलवा देते हैं सर, हुक्म करें।
3: सर मैं दिल्ली में तो संभाल में ड्यूटी करता रहूंगा।
0: वो बंदा कहाँ पे होता है? वो बंदा कहाँ पे होता?
3: वो उकाड़े में।
0: पैसे आपने उकाड़े में भेजे थे?
3: जी जी।
0: अच्छा ठीक हो गया, चलें आप ऐसा करें ना, किसी तरह मुझसे रابطہ करें, फिर हम इसको देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज। कुछ दो चार कॉल्स और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो, आज ज्यादा लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, वाह क्या खूबसूरत सिटी है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, जनाब कौन कहां से? सर मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हूँ, और चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अदील चौधरी हमें सुन रहे हैं। वाह वाह क्या बात है यार, अदील साहब ने वेलकम, अदील चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया,
3: बहुत अच्छा लगता है, बड़ी बहुत मजा आता है,
0: बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी,
3: बड़ी
0: अल्लाह ताला आपकी दिल की आंखें
3: जो है वो दुआएं है कि आप लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी नजर वापस आ जाए।
0: सर क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
3: और आपकी आवाज बहुत अच्छी है और बहुत प्यारा आप पढ़ते भी है और बहुत प्यारा सुनाते भी बोलते भी है
0: सर, अल्लाह आपको जाए।
3: दिल कर रहा था आपसे बात करने के लिए, तो मेरी बहुत देर से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, लेकिन आज भी बात कॉल।
0: सर अल्लाह आपको जजाय खैर अता करे सर, हम आपकी मोहब्बतों के तलबगार, बहुत शुक्रिया सर, हम आपकी मोहब्बतों के तलबगार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी बस सेकंड लास्ट कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, उसके बाद फिर जिक्र शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
4: वालेकुम सलाम
0: जनाब, क्या हाल है जकीउल्लाह जकी, क्या हाल चाल है सर, क्या करते हैं आप लाइफ में? अच्छा तो नहीं, पोल्ट्री फार्म भी अपना है, रात को चौकीदारी सुबह मजदूरी, तो सोते किस टाइम पे हैं फिर आप? हाँ मसरूफ है जिंदगी, नहीं कहो पैसे छाप रहा हूँ सुबह शाम। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया, दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बड़ा एहसान है। और जी जी सुनाइए सुनाइए।
4: अब वो हर जाए किसी और से के साथ होगा,
0: आए
4: आए क्या
0: भाई, वाह भाई वाह, क्या कहने भाई, क्या कहने क्या कहने।
4: और दूसरा चेंज भी है,
0: हाँ
4: हम बावफा के इसलिए नजरों से गिर गए,
0: ऐसे ही है ऐसे। हाय हाय हाय, हम बेवफा थे शायद इसीलिए नजरों से गिर गए, शायद उसे वफा किसी किसकी थी,
4: और हम बावफा थे इसलिए नजरों से
0: गिर गए,
4: उसे तलाश की जो
0: की। भाई वाह भाई वाह,
4: तीसरा शेर है, बुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आता
0: है,
4: पर वो क्यों कर याद आता है।
0: हाय हाय हाय,
4: रात का टाइम और 1 बजे के बाद में सत्ता का प्रोग्राम संवाद कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप कुछ कॉलर से
0: अपनी मर्जी सर, ये बस देख आप जैसे लोग पढ़े लिखे लोग जब तक जिंदा है ना तो हम खुश हैं जिंदगी में। चले बहुत शुक्रिया, लास्ट कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो हेलो ओके चले जी शुरू करते हैं। एक सवाल हमारे पास आया था, बड़ा मजे का सवाल था, वो सवाल ये था कि भाई मैं अपनी जिंदगी में जब जब अपनी लाइफ को पैटर्न पे लेकर आती हूँ तो वो मतलब 4-5 दिन 6 दिन तो पैटर्न पे चलती है, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और मुझे ये एहसास भी होता है कि मैं गलत कर रही हूँ। अब वो किसी भी हवाले से हो सकता है, लाजमी नहीं है कि वो किसी एक सर्टन डिपार्टमेंट के हवाले से हो, समटाइम ऐसा हो सकता है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप फजूल खर्ची बहुत कर रहे हैं, आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप जिक्र अस्कार नहीं कर रहे हैं, या आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपका इखलाक अच्छा नहीं है, अगर आप

क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास एक टीवी था 14 इंच का, और हमारे पास सिर्फ एक कमरे जितने दो कमरे थे, मतलब जितना एक नॉर्मल कमरे का साइज होता है उतने दो कमरे थे, हम उस घर में रहते थे। और मैंने अपनी शर्ट उतार के उसके ऊपर डाल के रखी हुई थी, क्योंकि वो चमक पड़ती थी तो अम्मी उठ जाती थी और अम्मी डांटती थी कि रात की, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज का और पाकिस्तान का टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तकरीबन रात के 2-3 बज रहे होते थे, 3-4 बज रहे होते थे और वहां पे मैच हो रहा होता था। तो मैं अपनी, एक दफा मैंने वो कपड़ा छपड़ा नहीं मिला तो मैंने अपनी शर्ट उतार के उसके ऊपर रख दी और बैठा रहा मैं ठंड में कि यार मैच देखना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? कि मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि आई एम फ्रॉम दैट लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन अल्लाह ने हाथ पकड़ा, अल्लाह ने रहमत शामिल की, मेहनत की, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता चीजें पूरी हुई। तो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम 1500 रुपए का पिज्जा खा लेते हो या शीशा या इस तरह की, 1100 रुपए की सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स की, सिर्फ 1100। कितनी यार, तुम सिनेमा में टिकट लेते हो ना तो आजकल नॉर्मल सिनेमा में तुम टिकट लेते हो तो 1000 रुपए की टिकट है, एक दफा मूवी देखते हो फारिग। 1100 रुपए की महीने की सब्सक्रिप्शन है, यानी कि तुम पूरा महीना देखोगे नेटफ्लिक्स और 1100 रुपए तुम्हें देने हैं। अब नेटफ्लिक्स पे प्रॉब्लम क्या है? नेटफ्लिक्स पे जाके तुम देखोगे 365 डेज या 50 शेड्स ऑफ लाना, ये काम नहीं करना है जिंदगी में। इससे निकलो, इससे भी बाहर बहुत बड़ी जिंदगी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी कोई दूसरी राय नहीं, ये भी जिंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंसान है, इंसान के अंदर अल्लाह ने ये चीज रखी है, लेकिन इससे हटके वहां पर मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं। एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे कि बी स्मार्ट विद योर मनी। अब सुनना जरा कि वो डॉक्यूमेंट्री कैसी है। वो डॉक्यूमेंट्री है, उसका नाम है बी स्मार्ट विद योर मनी। उसमें उन्होंने क्या किया है कि 5 ऐसे लोगों को चुना है जो कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में थे, जिनके ऊपर फाइनेंशियल लोन था बहुत ज्यादा, वो बैंक करप्ट हो गए थे, और दुनिया के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो इकोनॉमीज की जो है मामला देखते हैं, दुनिया को वर्ल्ड इकोनॉमी की स्ट्रेटजी बनाकर देते हैं, उनको, उन 5 बंदों को उनके हवाले किया गया कि जनाब आप इनको इस सिचुएशन से निकालें। तो उन्होंने उनके ही एसेट, जो के उनको पता नहीं चल रहा था, उनके वो एसेट मैनेज सिर्फ करते हुए, उनके जो एसेट हैं, किसी से पूछा अभी तुम्हारा क्या एसेट है, मोबाइल फोन है, कैमरा है, लैपटॉप है, उनको सिर्फ उन्हीं के एसेट को मैनेज करते हुए उनको उस डेट से बाहर भी निकाला, बल्कि उनकी जिंदगी को प्लस में लेकर आए, प्रॉफिट में लेकर आए। पूरी डॉक्यूमेंट्री है उन 5 बंदों पे। अब वो कितनी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है, तुम कितना सीख सकते हो उससे। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है कि हमने क्या करना है, अव्वल तो चलो नौकरी नहीं है, नौकरी अगर है भी तो 5 बजे घर आ जाना है, 5 बजे घर आके पंखा देखते रहना है, हाय अल्लाह हाय अल्लाह काशिफ से काश मेरी शादी हो जाती, या अल्लाह फूफो का बेटा शकीन ही रह गया, या अल्लाह मेरे तो स्किन बड़ी अच्छी थी, या अल्लाह ये पिंपल क्यों आ गया, या अल्लाह मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ मैं ये। अबे नहीं यार, निकलो इससे बाहर यार, बहुत बड़ी है दुनिया, बहुत बहुत बहुत बहुत बड़ी है दुनिया भाई। सो आई होप ये पिछले कोई आधे घंटे से मैं बात कर रहा हूँ इसका कोई असर हुआ होगा और आपने कोई बात समझी होगी। अगर समझी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, उसके बाद फिर मैं वो खुशबख्त एजाज अहमद खान साहिबा के सवाल पर आता हूँ, थोड़ा पानी पी लूँ।

या करबला का वाकया पड़ा है तो हुज्जत तमाम की है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, शायद मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूं। हुज्जत तमाम करना क्या होता है? हुज्जत तमाम करना यह होता है कि आप दूसरे को बताएं कि मैं कर सकता हूं लेकिन मैंने नहीं किया। यह आपके सवाल का जवाब है कि हजरत अब्बास को इजाजत क्यों नहीं दी गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, हजरत अब्बास तो दूसरी नंबर की बात आएगी ना, पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद इस चीज को लीड कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद हुज्जत तमाम करके दिखाई है। अगर आप उनकी शहादत से कुछ लम्हात पहले की जंग देखें तो बाकायदा जब अली असगर, जनाबे अली असगर इस दुनिया से रुखसत हो गए, जनाबे अब्बास रुखसत हो गए, जनाबे अली अकबर रुखसत हो गए, जनाबे कासिम रुखसत हो गए, तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद आए और लोगों से कहा कि आओ अब देखो कि एक भूखा प्यासा किस तरह जंग लड़ता है, आओ अब दिनों के भूखे प्यासे की जंग देखो। अब समझ रहे मेरी बात? क्या आओ अब हमला करो, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि मैं किसका बेटा हूं। और रवायात में है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब हमला किया तो फौजों की फौजें जो हैं, जो उनकी कतारें हैं, उनको भागने पर मजबूर कर दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। बेटा अली का था, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद ताकत में कमजोर थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके ऊपर इम्तिहान था। उन्होंने हुज्जत तमाम की, उन्होंने हमला किया, बहुत सारे मुशरिकीन को, बहुत सारे लईनों को फिलनार किया, जहन्नम वासिल किया। और फिर एक मकाम पे जब अजान असर का वक्त हुआ तो उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ए खुदा मैं तेरी रजा में राजी हूं। और फिर उनका घेराव किया गया और जिस तरह से फिर उनको शहीद किया गया। तो बेसिकली तो ये इम्तिहान था, दैट वॉज द रीजन कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास को इजाजत नहीं दी, खुद हुज्जत को तमाम किया और अल्लाह पाक के लिए जो कुर्बानी जिसका वादा किया गया था उस वादे को निभाया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप पूछ लीजिए।

चलें जी सुमा, अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज आ गया कि नहीं, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी कहा था, मुझे पता नहीं है कि क्या अलाइनमेंट है प्रोग्राम के हवाले से, क्या मुहर्रम में दिस ईयर इट विल बी द शोज और नॉट, क्योंकि अमूमी तौर पर जो पिछले साल गुजरे हैं, जो पिछले ईयर्स गुजरे हैं, उसमें तो ये होता है कि यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ट्रांसमिशंस नहीं होती हैं, शोज नहीं होते हैं। तो अगर वही रवायत बरकरार रहती है तो फिर उस हिसाब से तो शायद आज ये आखिरी प्रोग्राम हो मुहर्रम से पहले, क्योंकि कल एक शेड्यूल प्रोग्राम ज़रूर है, लेकिन अगर मैं शहर में हुआ तो डेफिनेटली आई विल कम, अगर नहीं हुआ या मैं कहीं स्टक हो गया तो फिर ये आज का प्रोग्राम आखिरी है। तो ये मेरा पैगाम है आप सभी लोगों के लिए, ये जो मुहर्रम के 10 दिन अब आ रहे हैं, वैसे तो सारा साल ही ज़ाहिर है हमें पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तालीमात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे गुजारना चाहिए, लेकिन कुछ खसूसी आयाम होते हैं, जैसे रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं, वैसे तो सारा साल भी रख सकते हैं, इसी तरह हम जो है अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं ख़ास ईद के ऊपर, अदरवाइज़ हम गरीबों को गोश्त तो हर साल खिला सकते हैं, सारा साल खिला सकते हैं। सो अर्ज सिर्फ ये है कि जो यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम के दिन हैं, बड़े कीमती हैं, ये हुर बनने के दिन हैं। आपने कभी किसी बहसों मुबाइसे में नहीं पढ़ना है, ख़ास तौर पे इस 10 दिनों में, जैसे यकम मुहर्रम शुरू हो आपने किसी को ये बहस नहीं करनी है किसी के साथ कि आप मातम करते हैं आप नहीं करते हैं, जो करता है उसने ये नहीं बताना कि भाई तुम क्यों नहीं करते, और जो नहीं करता उसने उससे नहीं पूछना कि तुम क्यों करते हो। आपने गूगल से पिक्चर उठा उठा कि ये नहीं कहना कि ये मेरे नबी का दीन नहीं है, अदरवाइज़ वो भी आपके फ़िरकों में से फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी उठा लेंगे कि जो कि वो भी नबी का दीन नहीं होगा और नहीं है। ये फ़िरकों में देखें, फ़िरकों में मसले हो सकते हैं क्योंकि ये इंसानों के बनाए हुए हैं, दीन में कभी कोई मसला नहीं होगा क्योंकि वो खुदा ताला का बनाया गया है, रसूल अल्लाह के थ्रू हम तक पहुँचा है, बनाने वाला खुदा ताला, पहुँचाने वाले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फ़िरकों में बार कैफ ऐसी चीज़ मौजूद है, मैं शर्त लगा सकता हूँ आपसे, कोई किसी मसले का बंदा इस वक्त मुझे सुन रहा हो, मैं चैलेंज देता हूँ ऑन एयर कॉल करे, किसी मकाम पर किसी जगह पर मिल ले और मुझे कहे कि भाई 100% मेरे मसलक में चीज़ें ठीक हैं, मैं हर मसलक में से कोई ना कोई चीज़ निकाल के बता सकता हूँ कि हाँ इसकी दलील मुझे रसूल अल्लाह की ज़िंदगी से साबित करें, नहीं होगा। चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी एक चीज़ की बात नहीं कर रहा, चाहे वो हमारी जो शियत कम्युनिटी है उससे हो, चाहे वो हमारी अहले हदीस कम्युनिटी हो, चाहे हमारी अहले सुन्नत कम्युनिटी हो, चाहे वो हमारे बरेलवी भाई हों, चाहे वो हमारे देवबंदी भाई हों, जितने भी मसालिक हैं, जितने भी मसालिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब मुसलमान हैं, सब के सब एक अल्लाह को मानते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और आखिरी रसूल मानते हैं, सो आले बैत से मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अब यकम मुहर्रम शुरू हो और यकम से 10 दिन के आप कोई ऐसी ऐसी चीज़ें उठा गए कि ये दीन में कहाँ है, ये दीन में कहाँ है, तो फिर दीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मसालिक में भी होंगी नहीं होंगी। तो आपने बहस में नहीं पढ़ना है कि ये ऐसे क्यों, ये वैसे क्यों। अगर आपको लगता है कि भाई न्याज नहीं दिलानी चाहिए तो ना दिलाएं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी आपके मुँह में डाल रहा है। अगर आपको लगता है कि मातम नहीं करना चाहिए तो ना करें, जो कर रहा है सवाल तो उससे होना है। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो आप नहीं कर रहे ना, आपसे तो सवाल होना ही नहीं है, तो जिससे होना है उसको करने दें। लेकिन करना क्या है, आपने हुसैन की फिक्र ढूंढनी है, हुसैन की फिक्र को हुसैन समझ के ढूंढना ताकि आप हुर बन जाएं। यार जुमला मैं कह गया हूं, आप सुन गए हैं, हुसैन की फिक्र को समझना हुसैन समझ के, हुसैन समझ के हुसैन की फिक्र को समझना ताकि आप हुर बन जाएं। ये हुर बनने के दिन है, खुदा की कसम ये हुर बनने के दिन है। सो इसलिए बाकी गिरिया ज़रूर करना है। अब गिरिया हर बंदे का मुख्तलिफ है, कोई बंदा अगर कहता है कि भाई मैं मीडिया का आदमी हूँ, मैं 10 दिन कोई नाच गाने की खुशी वाला प्रोग्राम इवेंट नहीं करूँगा, ये उसके गिरिया का तरीका है, चाहे वो आंसू ना भी बहाए, मातम ना भी करे, लेकिन ये उसके गिरिया का तरीका है। कोई आदमी कहता है कि भाई मैं आंसू बहाऊंगा तो ये उसके गिरिया का तरीका है। कोई कहता है कि भाई मैं आंसू नहीं बहा सकता या मेरे आंसू आते नहीं, मैं बड़ा सख्त दिल आदमी लेकिन मैं पानी पिलाऊंगा, तो ये भी एक गिरिया का तरीका है। कोई कहता है कि भाई मैं 10 लोगों को खाना नहीं खिला सकता, मेरी हिस्से सिर्फ एक बंदे को खाना खिलाने की है, तो ये भी उसका गिरिया हो सकता है, वो एक वाला कबूल हो जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नाउ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल या परसों से आई विल बी स्टार्टिंग द ड्राइव, और वो सारा चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। तो इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट जस्ट डू दैट। अल्लाह ताला आपकी तमाम तर कोशिशों काविशों को कबूल फरमाए, बाकी जहाँ तक मुझसे हो सका तो वो तो इंशाल्लाह मामला रहेगा ही, बट इफ़ यू वांट टू जॉइन माय हैंड्स इन दैट यू आर मोर मोर मोर देन वेलकम। बट हैविंग सेड दैट, तो ये चीज़ें हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पढ़िए, वाकया करबला को पढ़िए, उस जुरत उस इस्तकामत को पढ़िए, उस तरबियत को पढ़िए कि जिस तरबियत के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जो काफिला है उसकी तरबियत की है।
اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے, کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین علیہ السلام کے. غم آپ کو سجدے کی حالت میں جا کر خدا سے رو کر مانگنا پڑے تو ضرور مانگیے. خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو غم حسین علیہ السلام میں روتی ہے. چھوڑ فرید نہ یار دامن دوہا جہاں نہ داؤ ساڈا زامن, وہ دامن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمۃ اللہ علمین رفو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ جوائن کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے, وہاں پہ اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے. ذیشان ناصر لکھیں گے میں آپ کو مل جاؤں گا. ایگزیکٹ یوزر آئی ہے ZEESHANNASIR26. یہاں پہ آپ جائیں گے آپ کو میری آئی ڈی مل جائے گی, فالو کر سکتے ہو, میسج کر کے اپنا فیڈ بیک پہنچا سکتے ہو. ایز آئی سیڈ, اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. دنیا اور آخرت میں یہ غم آپ کو اگر نماز میں سجدے کے عالم جا کے خدا سے مانگنا پڑے کہ بھائی یہ غم مجھے عطا کریں, ضرور مانگیے. اسی طرح دنیا اور آخرت کے جو ہمارے وارث ہیں وہ رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا دامن جو ہے وہ کبھی مت چھوڑیے, نہ ان کا دامن چھوڑیے نہ ان کے داماد امام علی علیہ السلام کا دامن کبھی چھوڑیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. زندگی نے, سانسوں نے, اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تل دن اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حق, اللہ حق, اللہ حق, حق موجود صدا صدا صدا صدا موجود, جتھا پیر ہوے اتھا ہی خیر ہوے, کل عالم دی خیر انہوں دے صدقے ساڈی بھی خیر. آپ لوگوں کا پوکی جا رہا ہے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد.

बुजुर्गों के कलाम में बहुत सारी चीजें मुश्तरक हैं, जहां वो प्यार और अपने रब के साथ यूनिसन का पैगाम देते हैं, वहां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और नथिंगनेस की बात भी करते हैं, यानी अपने आप को पहचानने की कोशिश। इंसान अपने आप को बड़ी तोप चीज समझता है, लेकिन जैसे जैसे शऊर की मंजिलें तय करता है, अपने असल मकाम से आगाह होने लगता है। कुछ ऐसा ही कलाम पेश खिदमत है।

तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। बस अगर तूने अपने आप को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूंगा तुझको वो भी जो तेरी चाहत है। पर अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको।